92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

0: 91.2 MHz पर ये तुहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। तो सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।
1: क्या हाल है मम्मी जी तुहां दा? कुतू एथों दीदी? एक महीना होई है मम्मी जी इत्थे आयो, आने दा नाम नहीं लैदी। अज तो मैं पंचायत लेके आ पूरी, तेने कन्ने लेकर ही जाना अज।

91.2 MHz पर ए तुहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहा सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन दी।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: पता
5: बैठा है?
4: नहीं तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। नाउ से यू आर अ जीनियस।
1: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की, तो होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
7: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
6: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
8: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
6: हाँ बोलो।
8: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
6: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
8: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
1: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो चुकी है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: श्रोताओ, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। प्रस्तुत है आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन। मैं हूं सचिन कपूर। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। मुख्य समाचार, कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार 500 ड्रोन से सजेगा आसमान, भव्य लेजर शो भी होगा, प्रवेश के लिए आई कार्ड जरूरी होगा। अक्टूबर से हिमाचल में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की घर बैठे होगी स्वास्थ्य जांच। गंभीर मरीजों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के गर्भगृह को नया स्वरूप देने की तैयारी। 3 किलो सोने और 6 क्विंटल चांदी से सजावट की योजना। पूर्व सैनिक, दिव्यांग और BPL अभ्यर्थियों को मेरिट में अनारक्षित पद पर नियुक्ति का प्रावधान। चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग की रियायतों को लेकर नियम स्पष्ट। चंबा की धाविका सीमा कुमारी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास। 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का 16 साल का इंतजार खत्म किया। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इस बार तकनीक और परंपरा के अनोखे संगम का गवाह बनने जा रहा है। समाचार के अनुसार दशहरा उत्सव के दौरान पहली बार 500 ड्रोन के माध्यम से आसमान में भव्य दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को लेजर शो भी देखने को मिलेगा। पहाड़ों की पृष्ठभूमि में होने वाला यह आयोजन दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी उत्सव में आने वाले लोगों को निर्धारित पहचान पत्र साथ रखना होगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी विशेष रूप देने की तैयारी है। समाचार में बताया गया है कि एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों के सांस्कृतिक दलों की भागीदारी भी प्रस्तावित है। राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और पंजाब के सांस्कृतिक दलों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। दशहरा उत्सव में भारतीय संस्कृति की विविधता को दिखाने के साथ साथ हिमाचली लोक संस्कृति और परंपराओं को भी प्रमुखता दी जाएगी। 500 हिमाचल प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच करने की योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इस योजना को लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना और बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही उसकी पहचान करना है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बुजुर्गों की सामान्य स्वास्थ्य जांच करेंगी। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और सामान्य स्वास्थ्य स्थिति की जांच के साथ साथ बीमारी से जुड़े लक्षणों पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच के दौरान यदि किसी बुजुर्ग में गंभीर बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें आगे के उपचार के लिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी इस अभियान को प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की घर घर स्वास्थ्य जांच से बुजुर्गों में समय रहते बीमारी की पहचान करने में मदद मिल सकती है और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। घर से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में परेशानी झेलने वाले बुजुर्गों के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। धर्मशाला के शक्तिपीठ श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के गर्भगृह को भव्य स्वरूप देने की तैयारी चल रही है। गर्भगृह की दीवारों और अन्य हिस्सों को सजाने के लिए सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें करीब 3 किलो सोने और 6 क्विंटल चांदी की सामग्री से सजावट की योजना बताई गई है। इस कार्य में लुधियाना के एक श्रद्धालु की ओर से सहयोग किया जाएगा। वहीं गर्भगृह के लिए वियतनाम से विशेष मार्बल मंगवाए जाने की भी जानकारी दी गई है। मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। दीवारों और दरवाजों का निर्माण तथा अन्य सजावटी कार्य भी किए जा रहे हैं। गर्भगृह में एक समय में करीब 100 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था किए जाने की योजना है। मंदिर प्रशासन की ओर से निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री चामुंडा धाम हिमाचल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विस्तार श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और BPL सहित क्षैतिज आरक्षण वाले वर्गों के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर समायोजित किए जाने को लेकर नियम स्पष्ट किए गए हैं। राज्य सरकार के नए निर्देशों के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य या अनारक्षित अभ्यर्थियों के समान मानकों पर बिना किसी रियायत का लाभ लिए मेरिट में चयनित होता है तो उसे अनारक्षित पद पर समायोजित किया जा सकता है।
वहीं यदि किसी अभ्यर्थी ने आयु सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता या अन्य निर्धारित मानकों में छूट का लाभ लिया है तो उसे आरक्षित पद के तहत माना जाएगा। सरकार के निर्देशों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में भी प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। समान मानकों पर मेरिट से चयनित होने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित पद के विरुद्ध समायोजित करने की व्यवस्था बताई गई है। इससे भर्ती प्रक्रिया में मेरिट और आरक्षण से संबंधित स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। चंबा जिले के रेटा गांव की धाविका सीमा कुमारी ने एशियन गेम्स में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। जापान के आईची नगोया में आयोजित प्रतियोगिता में सीमा ने 32:50.05 का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस पदक के साथ महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में भारत का 16 साल का पदक इंतजार समाप्त हुआ है। इससे पहले भारत को इस स्पर्धा में 2010 में पदक मिले थे। दौड़ के दौरान सीमा शुरुआत में आगे रही लेकिन बीच में पीछे हो गई। इसके बाद अंतिम चरण में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। सीमा का सफर हिमाचल प्रदेश के चंबा के दुर्गम क्षेत्र से शुरू हुआ। समाचार रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2015 में उनका चयन धर्मशाला स्थित साई केंद्र में प्रशिक्षण के लिए हुआ था, जहां उनके खेल को आगे बढ़ाने में प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीमा की इस उपलब्धि पर चंबा और धर्मशाला सहित पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है। और खास बात यह है कि सीमा आने वाले दिनों में 5,000 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लेने वाली है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी की दरिणी पंचायत में वीरवार को विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने 4.54 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 33/11 kV के विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इस सब स्टेशन से धारकंडी क्षेत्र की 8 पंचायतों के करीब 8600 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसे क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही कम वोल्टेज की समस्या का समाधान होगा तथा लोगों को बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पठानिया ने बताया कि कुठारना में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए 10 लाख रुपए की लागत से नया 63 kV ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। वहीं रुलेड और हार बोह में करीब 25 लाख रुपए की लागत से 25 kV ट्रांसफार्मरों को 63 kV में अपग्रेड किया गया है। उन्होंने कहा कि लाहड़ी और घटारड़ा में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्य प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। दरिणी सब स्टेशन से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए शाहपुर से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप सुन रहे थे प्रमुख समाचार।

0: प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सेवा व सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सार्वजनिक परिवहन सुविधा को मजबूत करने पर बल दे रही है राज्य सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बनी मददगार। ऊना जिला में लगभग 96,000 किसान लाभान्वित। और शिमला के गेटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, 96 शॉर्ट फिल्में होंगी प्रदर्शित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में शहरों और गांवों के बीच दूरी में कमी आई है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: आत्मनिर्भर भारत बनाना चुनौतियाँ आएगी,
2: चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले, इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा ले सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कंसा मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल नेरचौक में फ्री टेस्ला MRI मशीन और टर्शरी केयर कैंसर सेंटर का शुभारंभ और पैट सिटी स्कैन मशीन के अधोसंरचना विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों से संवाद भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन सुविधा को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के माध्यम से स्वच्छ व बेहतर परिवहन को बढ़ावा दे रही है। शिमला में HRTC के निदेशक मंडल की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को 250 नई डीजल बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी बसों को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाएगा और उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, ताकि निगम के बेड़े को और आधुनिक बनाया जा सके। अग्निहोत्री ने तकनीकी समिति को निगम के बेड़े में शामिल की जाने वाली नई इलेक्ट्रिक बसों के प्रोटोटाइप को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बसों की बैटरी क्षमता 350 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, ताकि इनका संचालन लंबे रूटों पर भी किया जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदेश में किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। ऊना जिला में करीब 96,000 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
3: ऊना जिला के कार्यकारी राजस्व अधिकारी विपिन कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों से योजना की आगामी किस्तों का बिना किसी रुकावट से लाभ प्राप्त करने के लिए अतिशीघ्र सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने की अपील की है। लंबित मामलों में किसान अपनी भूमि की सीडिंग हेतु पटवारी द्वारा सत्यापित नकल जमाबंदी तहसील कार्यालय में जमा करवाएं। राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग करवाएं।

0: और डिजिटल कृषि सेवा एवं ई केवाईसी के लिए नजदीकी लोकमित्र केंद्र से संपर्क करें। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र होली स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के नवनिर्मित छात्रावास भवन के उद्घाटन अवसर पर कल उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इन विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकलव्य विद्यालय होली के भवन का शेष निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय ये फिल्म महोत्सव विश्व और भारतीय सिनेमा के उत्सव मनाते हुए देश विदेश के फिल्मकारों, अभिनेताओं, लेखकों और सिनेमा प्रेमियों को एक मंच पर लेकर आया है। महोत्सव का आयोजन शिमला में NFDC, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और प्रदेश के भाषा व संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इस महोत्सव में 33 देशों और देश के 15 राज्यों की 96 शॉर्ट फिल्में प्रदर्शित होंगी। महोत्सव के निदेशक पुष्पराज ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला का उद्देश्य देश व दुनिया भर के स्वतंत्र फिल्मकारों को एक मंच प्रदान करना है। महोत्सव में विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और सिनेमा परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में, एनिमेशन फिल्में दिखाई जाएंगी।
5: इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला, ये हमारा 12th एडिशन है और हम इसमें फीचर, शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, इस तरह की फिल्म्स जो होती हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनाते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म रहता है। देश के विभिन्न राज्यों से और दूसरी कंट्रीज से भी फिल्म मेकर आए हैं। मैं चाहूँगा शिमला में और जो आसपास के बाकी राज्यों से आना चाहते हैं, एक ऑथेंटिक सिनेमा, रीजनल सिनेमा और इंटरनेशनल सिनेमा देखना चाहते हैं, तो ज़रूर गेटी थिएटर में आए। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ये फिल्मों का स्क्रीनिंग होगी।
1: विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कुल्लू जिले में मनाली एक्सपो 2026 का कल शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये आयोजन उत्तर भारत का प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस और इंडस्ट्री एक्सपो है। एक्सपो में देश भर से 100 से अधिक कंपनियां, ब्रांड्स, MSME और स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि मनाली एक्सपो स्थानीय युवाओं और कारोबारियों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेगा।
6: मनाली एक्सपो 2.0 पूरे इलाके के लिए, रीजन के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी है और साथ में जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स लोग लेके आ रहे हैं। ज्यादातर हमारे होटेलियर्स जितने हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, हमारे मनाली में मिले और कॉम्पिटेटिव रेट्स पे मिले। तो मैं समझता हूँ हर एक चीज को एक साथ में आगे ले जाने का काम इस तरह की एक्सपोज करती है।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, केंद्र सरकार की खोटी नियत से हो रहे पेपर लीक। दैनिक जागरण व पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है, प्राकृतिक संपदा और बहता पानी हिमाचल को बनाएंगे आत्मनिर्भर। जबकि दैनिक भास्कर लिखता है, पानी BBMB शानन से मजबूत होगी प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अमर उजाला की एक खबर है, HRTC के बेड़े में शामिल होगी 1000 नई ई बसें। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सेवा व सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सार्वजनिक परिवहन सुविधा को मजबूत करने पर बल दे रही है राज्य सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बनी मददगार। ऊना जिला में लगभग 96,000 किसान लाभान्वित। और शिमला के गेटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, 96 शॉर्ट फिल्में होंगी प्रदर्शित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का करती हूँ स्वागत कार्यक्रम में। एक बार फिर से सभी को सुषमा की प्यार भरी नमस्कार और गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसमें आप सुनते हैं गीत और जानकारियां भी आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो समाचारों के एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे गीत के साथ, और बातचीत भी हमारी ज़रूर जारी रहेगी इस गीत के बाद। तो लीजिए सुनिए संग्राम फिल्म का गीत अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आपने सुना ये गीत आई एम सॉरी। मैं कुल श्रोताओं, छोटा सा शब्द है सॉरी, लेकिन बहुत बड़ी ताकत रखता है। गलती हर इंसान से कभी ना कभी ज़रूर होती है, लेकिन अपनी गलती के बाद अगर एक छोटा सा शब्द सॉरी कह दिया जाए तो रिश्ते जो हैं वो सुधर सकते हैं और हम अपने रिश्तों को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो श्रोताओं, इस गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में थोड़ी सी बात करेंगे सकारात्मक सोच को लेकर। इस बारे में हम कार्यक्रम में बहुत बार बात करते भी हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि सोच का ही जादू है। हमारी सोच कैसी है उसी पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। कई बार श्रोताओं, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे हादसे या ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव होने के बाद बहुत सारे ऐसे बदलाव हमारी नेचर में आते हैं, बिहेवियर में आते हैं, जो कि हमारे लिए भी सही नहीं होते हैं। दूसरों के लिए तो खैर वो होते ही ठीक नहीं है, लेकिन सकारात्मक सोच रखने से एक तो हम अपने आप को हमेशा उस सोच के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर कुछ बुरा होना भी हो तो भी हम उसके लिए तैयार रहते हैं और बुरा होने पर हमें उसका इतना एहसास नहीं होता है। तो श्रोताओं, सकारात्मक सोच रखने वाले अच्छे माता पिता, अच्छे पति पत्नी और अच्छे अधिकारी साबित होते हैं, जबकि नकारात्मक लोगों की पूरी ऊर्जा लोगों को गलत साबित करने में ही व्यर्थ होती है। हम चाहें तो अपने व्यक्तित्व को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और हमारा सोचने का ढंग उसके लिए इनपुट्स का काम करता है। हमारे विचार इसमें इकट्ठे होते रहते हैं और धीरे धीरे वे गहराई में जम जाते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, हमारे विचार जितने बड़े होंगे, जितने अच्छे होंगे, हम उतने ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी विचार कह लीजिए या इस बात के साथ कि सकारात्मकता हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी सोच में हमारी सकारात्मकता जो है वो झलकनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए और सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो श्रोताओं, बातों को फिर से यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि बहुत लंबी बातें हो जाएं तो मनोरंजन थोड़ा सा कम लगता है। तो गीत को लेकर आगे बढ़ते हैं और बातों को भी जारी रखेंगे, लेकिन चलते हैं, पहले सुनते हैं साजन फिल्म का ये प्यारा सा गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोता आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आपने सुना इस गीत को। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं और हमने बात भी की कि आज से हमारे पितरों के जो श्राद्ध हैं वो शुरू हैं, तो इस पर एक बात और कहना चाहूँगी। पितृपक्ष हमें अपने उन बुज़ुर्गों और पूर्वजों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने हमारे परिवार को अपनी मेहनत, अनुभव और संस्कारों से सींचा। हम श्रद्धा से पितरों को स्मरण करते हैं और उनके नाम पर भोजन और दान भी करते हैं, उनकी आत्मिक शांति की कामना करते हैं। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर हम अपने माता पिता और बुज़ुर्गों को श्राद्ध के दिनों में ही याद करते हैं और तो जीते जी उनका सम्मान और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना उससे भी बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्हें समय पर भोजन करवाना, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, उनकी दवाइयों और ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनके साथ कुछ पल बैठकर बातें करना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे काम उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन हाँ श्रोताओं, ये भी एक बात है कि आजकल के समय में या तो हमें किसी कारणवश उनसे दूर रहना पड़ता है, कहीं हम दूर भी रहते हैं, कई बार पेरेंट्स कहीं अलग जगह रहते हैं, ऐसे में फ़ोन जो है वो हमारी बहुत मदद करता है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें ज़रूर उन्हें फ़ोन कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, हालचाल पूछ लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ का इंतज़ार रहता है। और कहते भी हैं कि बुज़ुर्गों को केवल भोजन ही नहीं अपनों के साथ और अपनापन की भी ज़रूरत होती है। श्राद्ध में हम पितरों को भोजन अर्पित करते हैं, लेकिन अगर हमारे माता पिता हमारे सामने हैं तो क्यों ना आज ही उनके साथ बैठकर भोजन करें और प्यार से उन्हें कहें, आप हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो श्रोताओं, इस पितृपक्ष पर एक संकल्प ज़रूर लें, पितरों को श्रद्धा से याद करें, लेकिन अपने बुज़ुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा जीते जी ज़रूर करें। तो कार्यक्रम में अपनी बातों को यहीं पर रोकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। सच में श्रोताओं, इस दुनिया में भगवान के बाद कोई भगवान है तो वो है हमारे माता पिता, जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे अच्छे बुरे में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम भी उनके साथ हमेशा प्यार के साथ खड़े रहें और उनका आदर सम्मान करते रहें। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। और आज 26 सितंबर का दिन है और आज के दिन हम विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी मना रहे हैं। तो श्रोताओं, जैसे ही पर्यावरण का नाम हम लेते हैं, हमारे सामने पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और जंगलों की तस्वीर आ जाती है। और इस पर्यावरण को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हम तो खैर कहते हैं ना कि पर्यावरण या इस सुंदर हसीन वादियों के बीच में रहते हैं। और रोज़ सुबह उठकर जब हम इन पहाड़ों को देखते हैं, इस हरियाली को देखते हैं, तो हम भी एकदम से हरे हो जाते हैं, यानी कि मन खुश हो जाता है। लेकिन श्रोताओं, इन जंगलों, इन पेड़ पौधों और इन नदियों का, इन पहाड़ों का ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। श्रोताओं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस मिट्टी से हमारा भोजन उगता है, जिस जगह हम रहते हैं और जिस वातावरण में हमारे बच्चे बड़े होते हैं, ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। और जब यही पर्यावरण स्वस्थ रहता है तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है कि इसके, यानी कि पर्यावरण के स्वास्थ्य का ख्याल हम मिलजुल कर ज़रूर रखें। श्रोताओं, एक बात हमारे दिमाग में आती कि हवा कैसी है और हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ी रहती है। अगर सोचिए, सुबह जब हम

घर से बाहर निकलते हैं और खुली साफ हवा में सांस लेते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है। इसके विपरीत अगर धुआं, धूल और अत्यधिक प्रदूषण और कचरे से भरा वातावरण हमारे आसपास की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है और ऐसे में हम सांस भी नहीं ले पाते। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनके बदौलत हम साफ सुथरी हवा ले पा रहे हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर और भी बात आपके साथ करेंगे, लेकिन बातों को अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पर रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। साजन फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे श्रोताओं, माफ़ कीजिएगा, आप सुनेंगे बीवी हो तो ऐसी फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, इस गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे श्रोताओं की आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में युवाओं में बाइक और कार तेज़ चलाने का उत्साह अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन सड़क पर कुछ सेकंड की जल्दबाजी हमारे और दूसरों के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। सड़क पर अपनी रफ्तार को सड़क की स्थिति, मौसम और ट्रैफिक के अनुसार रखना ज़रूरी है। हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाए रखें। साथ ही श्रोताओं, ये भी याद रखें कि तेज़ चलाना हुनर नहीं, सुरक्षित घर लौटना असली समझदारी है। और आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि बहुत तेज़ रफ्तार में युवा जो हैं वो एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा दे रहे हैं। तो श्रोताओं, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ये जो जीवन है हमें एक ही बार मिला है और इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। रफ्तार कितनी भी हो, ज़िंदगी उसके कहीं ज़्यादा कीमती है, इसलिए युवा जोश के साथ थोड़ी जिम्मेदारी भी रखें और अपने साथ साथ सड़क पर चल रहे हर व्यक्ति की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। साथ ही श्रोताओं, रोड पर चलते समय हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें भी रोड क्रॉस करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें बस लेनी होती है और इस जल्दबाजी में हम लोग कई बार रिस्क ले लेते हैं। एक साइड तो देखते हैं लेकिन दूसरी साइड हम देख ही नहीं पाते और रोड क्रॉस कर लेते हैं और ऐसे में कई घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए आपसे यही कहेंगे, जब हम रोड पर चल रहे हों, चाहे कहीं पहुंचने में देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आराम से रोड क्रॉस कीजिए। पैदल भी चल रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के, और जो ड्राइव कर रहे होते हैं उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि रोड पर चलने वाले और भी लोग हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों को यहीं रोकते हैं और एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में। तो लीजिए, मेरा नाम जोकर, इस फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत कि हमें बहुत संभल के चलना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे देख लेना चाहिए। तो श्रोताओं, बिल्कुल ज़िंदगी में भी हमें इसी तरह से चलना है और कई बार हमें ज़िंदगी में पीछे नहीं देखना चाहिए। पीछे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव अगर आए हैं तो उन्हें देखकर हमेशा उन्हें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तो ये गीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रैबिट डे की। तो श्रोताओं, खरगोश को सिर्फ बच्चों के खेलने की चीज़ ना समझें। बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे होंगे जिनको शौक़ होगा, जो कि पालतू जानवरों को घर में पालते हैं, चाहे वो खरगोश है चाहे वो कोई भी जानवर है। तो बच्चों को हमें ज़रूर समझाना चाहिए कि अगर हम खरगोश पालते हैं तो उसे बार बार गोद में उठाना या दौड़ाना या परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर भी डर और तनाव महसूस करते हैं, उन्हें आराम करने के लिए अपना समय और स्थान चाहिए होता है। अगर आपके घर में भी एक से ज़्यादा खरगोश हैं तो उनकी देखभाल भी ध्यान से करनी चाहिए। उनकी सेहत, व्यवहार और खाने पीने में बदलाव पर नज़र रखनी चाहिए। अगर खरगोश सामान्य से कम खा रहा है, बहुत सुस्त है और उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आया है तो पशु चिकित्सक से सलाह ले लेनी चाहिए। साथ ही श्रोताओं, एक बात और, कई बार हम किसी जानवर को देखकर भावुक होकर उसे घर ले आते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसकी देखभाल के लिए समय, जगह और जिम्मेदारी चाहिए। इसलिए पालतू जानवर घर लाने से पहले उसके बारे में जानकारी हमें ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि किसी जीव को अपने घर लाना आसान है लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी जिम्मेदारी निभाना असली प्यार है। तो इस इंटरनेशनल रैबिट डे पर अगर आपके घर में भी कोई नन्ना खरगोश है तो आज उसके लिए थोड़ा सा समय निकालिए, उसकी जगह साफ़ कीजिए, उसके खाने पानी का ध्यान रखिए और उसे प्यार के साथ साथ सम्मान और सुरक्षित माहौल भी ज़रूर दीजिए। तो कार्यक्रम में भी हम अब रुकेंगे और आपको कार्यक्रम का अगला गीत जो है वो सुनाने के लिए हम भी तैयार हैं और ज़रूर आप भी सुनने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो चलिए मिलकर सुनते हैं सूरज और चंदा फिल्म का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। श्रोताओं, हम आज बात विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर भी कर रहे हैं। श्रोताओं, हमारे हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में तो प्राकृतिक जल स्रोतों का अपना विशेष महत्व है। गाँव में बौड़ियाँ, कुएँ और दूसरे पारंपरिक जल स्रोत जो हैं वो केवल पानी के स्रोत नहीं रहे बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन का हिस्सा भी रहे हैं। ये जो पारंपरिक जल स्रोत होते हैं श्रोताओं, इनका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज होता है, इनकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। और पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी है। हमारा घर भी पर्यावरण का एक हिस्सा है श्रोताओं। कभी कभी हम सोचते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। घर में गीला और सूखा कचरा अलग करना चाहिए, प्लास्टिक का अनावश्यक इस्तेमाल कम करना, भोजन को बर्बाद ना करना, पानी और बिजली की बचत करना और आसपास की सफाई रखना, ये ऐसे काम हैं जिन्हें हम रोज़ कर सकते हैं। साथ ही श्रोताओं, पानी को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। नल खुला छोड़ देना, कई बार ऐसी आदतें हम में होती हैं जिनमें हम पानी बहुत व्यर्थ करते हैं, तो खुद भी हमें पानी को बचाना है और छोटे बच्चों को भी पानी का मूल्य समझाना है और पानी की बचत कैसे करनी है, इन बातों को उनके साथ भी साझा करना है, तभी हम पर्यावरण और प्रकृति का ख्याल रख सकते हैं। तो श्रोताओं, अब फिर से आगे बढ़ते हैं और आपको कार्यक्रम में ले चलते हैं अगले गीत की ओर। तीसरी मंजिल फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप सुनने वाले हैं कार्यक्रम में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं और कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, यानी कि श्रोताओं, इस कार्यक्रम का समय अब संपन्न होने वाला है। तो आपसे ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, चलते चलते आपको आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत जरूर सुनवाएंगे हिना फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को सुनिए और अब अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं।

0: ड्रिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
1: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
0: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, और जीनियस।
2: यूर अ जीनियस।
0: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
3: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
4: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
5: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स की गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
6: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
7: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
6: हाँ बोलो।
7: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
6: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
7: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
2: गजब बेइज्जती है।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: गुड नाइट।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मेरी जॉब लग गई।
1: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
2: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
3: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
2: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
3: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
2: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना से यूर अ जीनियस।
4: यूर अ जीनियस?
2: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। तो होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
7: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
8: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
8: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
4: गजब बेइज्जती है।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ एक बहुत ही खास बातचीत के साथ। दोस्तों, हर बातचीत आप सभी की जिंदगी से जुड़ी, हमारी जिंदगी से जुड़ी रहती है, प्रेरणादायक, जिससे कि हमें जिंदगी में जीने की एक नई सीख मिलती है, नया उत्साह मिलता है, जिससे हम जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं और उसकी अहमियत को, सबसे खास बात कि अपनी लाइफ की वैल्यू को हम समझ पाते हैं। तो ऐसी बहुत कम बातें हमारे सामने आती हैं, क्योंकि जब खुद से जुड़ी बात सामने आए तो थोड़ा सा हम झिझक भी करते हैं, थोड़ा सा हम घबरा भी जाते हैं और अक्सर अपने बारे में सोचने से डरते हैं। लेकिन जिसने अपने बारे में सोच लिया वो सबसे महान, सबसे खास। जी दोस्तों, तो कहते हैं ना कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक युवा लेखिका जो है वो जुड़ी है। तो दोस्तों, अक्सर युवाओं की बात आती है तो आज के युवाओं का सफर आप सभी देख रहे हैं कि जिंदगी में राह भटक रहे हैं तो कुछ अपने सपनों को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो आज की ये बातचीत आप सभी के लिए बहुत खास रहने वाली है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में निमृत शर्मा जी का, जो कि अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें और बहुत ही खास एक बात बतानी है आपको, लेकिन वो खुद बताएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। तो स्वागत है निमृत जी आपका हमारी इस खास बातचीत में रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आने का मौका दिया, यहाँ पर खुद को प्रेजेंट करने का मौका दिया। मेरा नाम निमृत शर्मा है, मैं क्लास 10th में आई एम पब्लिक स्कूल यूएल कैंट में पढ़ती हूँ और अभी मैं 16 वर्ष मेरे को लगा है। तो मैंने ये बुक लिखी है, अभी मैं रिसेंटली एक बुक की राइटर बनी हूँ, ऑथर बनी हूँ, जिसका नाम है रियल टॉक टीन्स एडिशन। और ये बेसिकली टीनेजर्स के बारे में है और मुझे इसको लिखकर बहुत अच्छा लगा। जिस दिन ये बुक मेरे हाथ में आई थी, सो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, आई वुड से लाइक इट। वो मेरा बर्थडे था और सबसे बेस्ट प्रेजेंट था मेरे बर्थडे का। और ये जब मेरे हाथ में आई थी तो मैंने सोचा कि कैसे 5 महीने के अंदर, तो मतलब खुद को भी सोच कर ये लगा था कि 5 महीने में ही कैसे, खुद पे भी वो एक क्वेश्चन उठा था। बट उसके बाद में हुआ कि कैसे वो पढ़ाई के साथ में, इतना प्रेशर के साथ में, बहुत अप डाउन आते हैं, 5 महीने बहुत ज्यादा होते हैं और इतने कम समय में इतना कुछ लिखना बहुत डिफिकल्ट लगा इस लेवल पे। बट जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आगे जाकर इतना हो जाएगी। और मैं इन पेजों से लिखते लिखते यहाँ एक रेडियो स्टेशन पे अपने को खुद को प्रेजेंट करने आ जाऊंगी। बहुत अच्छा अनुभव है ये मेरे लिए और लाइफ का सबसे पहला स्टेप है ये मेरे।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी ने सुना और जाना कि निमृत जी में अभी ये 10th क्लास में पढ़ रही है और एक बुक लिखना बहुत बड़ी बात है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि टीन एडिशन पे इन्होंने बुक लिखी है, यानी कि युवाओं पे जो है इन्होंने बुक लिखी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं और आप सभी सुनेंगे तो सचमुच आप सभी को भी इसमें, इसको पढ़ने की जिज्ञासा जो है वो जाग उठेगी और इनकी जो ये मेहनत है वो वाकई में दिख रही है इस बुक के हर एक शब्द में, हर एक पन्ने में। तो निमृत जी, सबसे पहले तो वैसे दोस्तों ने जान लिया है कि आपने बहुत प्यारी सी ये बुक लिखी है, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके बचपन से, आपकी शुरुआती दौर से, कि आपकी जो स्कूलिंग गई वो कहाँ से और किस तरह से इस सफर में आप यहाँ तक पहुंचे हैं।
1: सो सबसे पहले मेरा जो बचपन है वो एकदम अकेलेपन में गया है, क्योंकि मैं सिर्फ बड़ों के अराउंड में ग्रो की हूँ। जब जहाँ मेरे दादी घर है वहां पर कोई भी छोटा बच्चा नहीं था, तो मैं बहुत बड़े लोगों के बीच में ग्रो हुई हूँ और वही शायद मेरी मेच्योरिटी का रीजन है। उसके बाद में मैंने वहां पे स्कूलिंग की है, न्यू होली मिशन चचिया में, नगरी में है वो। और वहां उस स्कूल ने मुझे शायद बहुत कुछ सिखाया, जो मैं आज जिस जहाँ पे हूँ वो ही मेरा बैकबोन है। और वहां पे मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी है, मतलब नर्सरी और KG। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए ये सोचकर कि शायद वो बैकवर्ड रीजन है तो हम लोग इतना ग्रो ना कर पाए, वो सोचकर हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पे न्यू कॉलोनी ब्लेड में हमने एक घर बनाया। फिर उसके बाद में स्कूल के बारे में हमें यहाँ पे इतना मालूम नहीं था, तो लोगों से थोड़ा जानने के बाद हमें पता चला कि आधुनिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। तो आधुनिक पब्लिक स्कूल में मैंने अपनी 1st से 3rd तक की पढ़ाई करी। उसके बाद में कोरोना आ गया, सो उसके बाद मेरे पापा आर्मी में सर्व करते हैं तो उन्होंने कहा कि आर्मी स्कूल इज द बेस्ट फॉर अस नाउ। तो फिर हम लोग आर्मी स्कूल में आ गए, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट में मैंने अपनी फोर्थ करी। आफ्टर दैट हम लोग पापा के साथ चले गए श्रीगंगानगर में, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर में मैंने अपनी फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ करी। उसके बाद में हम इधर आ गए, उसके बाद एट्थ नाइन्थ और राइट नाउ आई एम इन टेंथ। तो हम लोग यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट में।
0: जी, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है?
1: मेरे फैमिली में मेरे पापा मम्मा हैं, मेरे भाई, मेरा भाई है छोटा, दादा दादी हैं, मेरे चाचा चाची और उनकी बेबी।
0: जी बिल्कुल, तो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी फैमिली और कितना प्यारा सा इनका अभी तक का यहाँ तक का सफर रहा है। चेंजेस भी हुए, स्कूल भी चेंज किया, लेकिन फिर भी इनकी जो लगन है और मेहनत जो है वो जारी रही, कंटिन्यू रही। क्योंकि अक्सर हमें सुनने में यही मिलता है कि जब बच्चे को बार बार स्कूल चेंज कराया जाता है, बार बार यहाँ वहाँ जो है एडमिशन दिलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान जो है वो भटक जाता है, दिशा से भटक जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सभी के सामने है निमृत जी का, जो कि अपनी इस लगन को कंटिन्यू रख के यहाँ तक पहुंचे हैं और बुक लिखना एक बहुत बड़ा उनके लिए मुकाम है, बहुत बड़ी एक मंजिल को हासिल किया है उन्होंने। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि जब शुरुआती दौर में ही मतलब कि हमारे हौसलों को ये उड़ान मिले तो आगे का सफर और भी खूबसूरत और भी प्यारा हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, आइए लेकर चलते हैं आप सभी को एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की, और उसके बाद फिर से वापस आते हैं आप सभी के लिए इस बहुत ही खास बातचीत के साथ जुड़ने के लिए।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ और बहुत ही खास मेहमान आज के हमारे स्टूडियो में आप सभी के साथ जुड़े हैं निमृत शर्मा जी, जो कि अपनी लाइफ की कुछ खास बातें, जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें आप सभी के साथ साझा कर रही हैं। हो सकता है कि इनसे जो है बातें सुनकर बच्चों को थोड़ी प्रेरणा मिल सके जो कहीं अपनी जिंदगी में कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपना सपनों को लेकर कहीं थोड़ा सा उनमें कंफ्यूजन है। तो कहते ना, एक दूसरे की जिंदगी की कहानी सुनकर भी हमें प्रेरणा मिलती है, हमें जो है वो एक राह मिलती है देखने को। तो आइए जानते हैं और भी कुछ खास बातें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्यारी सी, आप सभी को सभी जानते ही हैं कि किताब लिखी है इन्होंने टीन एडिशन पे। तो निमृत जी, अभी हमने बात की कि किस तरह से आपकी स्कूलिंग रही, किस तरह से आपका जो है ये यहां तक का सफर रहा। अब चलते हैं आपके लिखने के दौर में। तो आपने ये बुक लिखी है, तो आपको मतलब ये लिखने का शौक बचपन से था या फिर मतलब कि पढ़ाई के साथ बाद में जागृत हुआ, या किसी को देखकर आपको ये प्रेरणा मिली, कोई ऐसा रोल मॉडल है आपकी जिंदगी में जिनको देखकर आपको लगा कि नहीं लिखना चाहिए, तो किस तरह से ये शौक आपके अंदर आया?
1: जी हाँ, हर किसी का शौक किसी कहानी के साथ होता है। तो ऐसा मेरे में इतनी कोई कहानी नहीं है, बट बचपन से ही मेरी हैंड राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, तो मुझे कैलीग्राफी वगैरह में बहुत शौक था और फिर वो मैं करती भी थी, घर पे भी खुद से भी करती थी और स्कूल में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया।

0: बहुत मतलब अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। उसके बाद में मतलब लिखने का बहुत शौक था बचपन पहले से ही। फिर बड़े होते होते मेरे को थोड़ी पोम्स वगैरह लिखने का, थोड़ी थीसिस वगैरह लिखने का बहुत अच्छा मतलब लगता था मुझे लिखना, वो हाथ मतलब हैंड रिटन में भी और वैसे भी, तो कोट्स वगैरह में लिखती रहती थी।
1: जी
0: फिर उसके बाद में जब अभी पहले तो इतने बचपन में इतना कोई ढंग से पता नहीं था कि कुछ हो सकता है आगे, बट जैसे बड़े हुए तो हमने बहुत कुछ सीखा देखा। और फिर हम यहाँ APSC ओल्ड कैंट में आए तो यहाँ पे एक दीदी है, उन्होंने मतलब वो एज अ यू कैन से वो मेरा रोल मॉडल, मैंने उन्होंने एक किताब लिखी है द लैंड ऑफ सोल्स,
1: जी
0: तो मतलब बहुत अच्छी किताब है। और उसमें उन्होंने भी 10th में अपनी बुक लिखी है, बहुत अच्छी बात है। और फिर मतलब मैंने उनसे बात करना चाहा एंड आई टॉक टू हर, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई, बट फिर बस वही थोड़ा सा हो जाता है तो वही कुछ हुआ लाइफ का थोड़ा सा,
1: जी
0: और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया। और फिर
1: ओके
0: अब तो लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है, तो मैंने अपना मई में लिखना स्टार्ट किया था। मेरे गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ा सा लिखना स्टार्ट किया, फिर हर शाम मैंने लिखा थोड़ा थोड़ा, छुट्टियों में लिखा, फिर स्कूल लग पड़े, 10th है बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: तो थोड़ा थोड़ा हर शाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, किस दिन लिखा होता था, किस दिन नहीं, किस दिन बहुत लिखने का मन करता था, किस दिन बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: लिखने का मन नहीं करता था, तो
1: जी।
0: थोड़ा थोड़ा हर शाम। और फिर बुक तैयार हो गई, हाथ में आ गई।
1: कितना समय लगा आपको बुक लिखने के लिए?
0: 5 महीने
1: 5 महीने। तो अक्सर निम्रत जी ऐसा भी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का वैसे बहुत शौक होते हैं, किसी को डांस करने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है, तो उसी के बीच किसी को स्पोर्ट्स का भी शौक रहता है। लेकिन ये जो आज का समय है, देखा देखी का समय है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है एक दूसरे के बच्चे के साथ जो कंपैरिजन, जो आपकी बुक में भी ये टॉपिक है, तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पेरेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो बच्चा इस फील्ड में बहुत बेहतर है, तो क्यों ना हमारा बच्चा भी उसी फील्ड में बेहतर हो, भले ही उनके बच्चे के शौक अलग हो, उनकी चॉइसेस अलग हो, उनके सपने अलग हो। तो आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहा और किस तरह से उन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प की?
0: जैसा आपने जिक्र किया, मेरी किताब एक मतलब असली लाइफ में जो होता है, रियल लाइफ पे बेस्ड है,
1: जी
0: और इसमें वही सब है जो हमारे साथ आजकल के टीनेजर्स, मैं भी एक टीनेजर हूँ, जो मैंने फेस किया है, और फेस इतना कुछ तो इसमें इतना जो मैंने किया है वही सब नहीं है, बट स्टिल मतलब जो मुझे लगता है और जो मैंने देखा है जहां तक अभी मेरी टीनेज हुई है वहां तक, तो वो मैंने इसमें लिखा है। और अभी लाइफ है तो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप इज ऑल्सो अ नेसेसरी थिंग इन इट, फैमिली का प्रेशर भी होता है, सपोर्ट भी होता है, बहुत कुछ चीजें आती है। तो मेरी लाइफ में मेरी फैमिली इज अ वेरी बिग सपोर्टर इसमें, ठीक है, वेरी बिग सपोर्टर दे, उन्होंने मुझे हर एक फील्ड में सपोर्ट किया है, मुझे जो मैं करना चाहती हूँ, वो चाहते हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं उससे भी ज्यादा करूँ, जहाँ पे मैं हूँ मैं उससे भी आगे बढ़ूँ। और एक कंपैरिजन की बात, और वो इस जमाने में इस लाइफ में बहुत जरूरी है, जरूरी पार्ट है कंपैरिजन। शायद कंपैरिजन ना हो तो हम लोग करना है ना चाहें
1: नहीं
0: कुछ,
1: करेंगे बिल्कुल।
0: कंपैरिजन हर जगह सही नहीं है, बट कुछ फील्ड्स में कंपैरिजन अच्छा होता है। और अगर कंपैरिजन स्टडीज में है तो मे बी हो सकता है, हर एक बच्चा हर एक उसका एक लेवल होता है कि वो वहां तक कर सकता है, और हर एक फील्ड में हर एक बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की डीमोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं, और कुछ होते हैं जो मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं तो एक मोटिवेशन से मोटिवेट होने वाली हूँ, मुझे डीमोटिवेट करोगे मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो हर एक का अपना पेस होता है ग्रो करने का।
1: जी बिल्कुल सही कहा है दोस्तों निमृत जी ने, कि कहते हैं ना कि पहलू दो ही होते हैं, तो कहने की बात कोई किसी भी तरीके से कह रहे हैं, लेकिन वो हम पे निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। कई बार कुछ भले ही किसी ने मतलब कि पिंच करने के लिए कहा हो, बुरा ही कहा हो, लेकिन वो बात हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, हमारे में एक ऐसा जुनून जगा देती है, एक ऐसा जज्बा जगा देती है कि वो हमें मंजिल तक लेकर जाती है। वही निमृत जी के साथ हुआ है, तो उन्हें आज यहाँ तक पहुंचाने में वो छोटी छोटी सी बातें जो है वो सपोर्टिव है। बिल्कुल दोस्तों, तो हर बात को गलत ही लिया जाए ये जरूरी नहीं है, हमें हर बात को एक सकारात्मक तरीके से अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना चाहिए, फिर हम जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं होगी और जिंदगी बेहतर बनती जाएगी। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से वापस आते हैं आप सभी के साथ इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: 91.5 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आज की ये बहुत ही खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही प्रेरणा भी ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों से जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। उनकी जिंदगी किस तरह से वो खुद को तो मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने जैसे दोस्तों को, अपने जैसे हम उम्र के बच्चों को भी वो मोटिवेट कर सकें, तो वो कोशिश जरूर उनकी सफल होनी चाहिए। ये आप सभी के सपोर्ट से सफल हो सकती है। तो आइए अपनी बातचीत में आगे बढ़ते हैं और फिर से चलते हैं निमृत जी की ओर। तो निमृत जी, जैसे अभी हमने बात की कि किस तरह से आपका ये शौक जो है आपको यहाँ तक लेकर आया और किस तरह से आपके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, अब आते हैं आपकी बुक पे। तो थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में बताइए कि आपने क्यों ये बुक जो है सिर्फ युवाओं पे लिखने का आपने इस पे डिसीजन लिया, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, अगर हम देखें बहुत ज्यादा इश्यूज भी हैं हमारे आसपास, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे युवाओं के ऊपर लिखना चाहिए, टीन एडिशंस पे, वो भी रियल लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें?
1: जी हाँ, मैं भी एक टीनेजर हूँ और मुझे लगता है कि एक टीनेजर की स्थिति को अच्छे से समझ सकता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: मैं भी उसी दौर से गुजर रही हूँ। सामने वाला जो टीनेजर है वो भी उसी दौर से गुजर रहा है, तो शायद हमारे कहीं पे
0: थॉट्स मैच हो सके,
1: कहीं पे हम लोग मिल जाएं और कहीं पे हो सकता है कि हम एक दूसरे को सपोर्टिव रहे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बुक सिर्फ बस उन्ही बच्चों को सपोर्ट करने के लिए है जो रियली वो चाहते हैं कि हम लोग मे भी अकेले हैं, बट वो अकेले नहीं है, उन्हें फील नहीं होने देना है, और उनके जैसे और भी हैं, मैं भी जैसे हूँ, ठीक है, टीनेजर्स वो अकेले नहीं है जैसे वो सोच रहे हैं। टीनेजर्स को लगता है कि शायद हम लोग सोच रहे हैं, क्या पता सामने वाले को अलग लगे, क्या पता हमें ही लगता हो वैसा सामने वाले को ना लगे। तो मैं उनको बेसिकली ये बुक यही बताना चाहती है कि वो अकेले नहीं है, उनके सामने और भी सभी हैं जो उन्हीं के जैसे हैं, तो अकेले नहीं है वैसे फील करने वाले, सामने वाले टीनेजर्स जो भी हैं वो सब भी वही फील कर रहे हैं। और इस बुक में जैसे आपको बताया है, मैंने सब रियल लाइफ के बारे में बताएगी, ऐसा कोई भी वो नहीं है जो आपको लगेगा कि ये शायद हमारी लाइफ से जुड़ा नहीं है, और इसमें हर एक चीज है जो लाइफ से जुड़ी है।
0: बिल्कुल,
1: टीनेजर्स एक ऐसी फेज है जिसमें बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ, इमोशन से भी, फ्रेंडशिप से भी, फैमिली प्रेशर से भी, सपोर्ट से भी, और आपके स्टडीज से भी आएंगे, आपके वेलबींग से भी आएंगे, आपके ड्रीम्स से आएंगे, गोल्स से आएंगे, बहुत कुछ है जो हमारे टीनेज लाइफ में चेंजेस लाएगा। तो थोड़ा बुक के बारे में मैं आपको रिव्यू बताऊं इसका, तो इसमें बेसिकली स्टार्ट होता है कि खुद के जानने के बारे में, आप क्या हो, कैसे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, सामने वाला क्या जज करेगा वो मैटर नहीं करता।
0: बिल्कुल,
1: हम लोगों को खुद पे देखना है, लाइफ तो बहुत कुछ सिखाती है और लोगों का कहना तो हमें मानना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं मानना है, खुद का ही सुननी है, सुनना सबका, करना अपना है।
0: बिल्कुल।
1: हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस सामने वाले की स्ट्रेंथ और सामने वाले की वीकनेस से कभी नहीं मिल सकती है, वो डिफरेंट ही होगी। और फिर फ्रेंडशिप सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे फैमिली इम्पोर्टेंट है तो फ्रेंडशिप भी वैसे इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स वो नहीं है जो तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहे, फ्रेंड्स वो हैं जो तुम्हारे साथ सपोर्ट में रहे और तुम्हें कहे कि तुम कैसे भी हो बट परफेक्ट
0: हो।
1: फ्रेंड्स वो है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे, वैसा नहीं कि तुम्हें बस ऐसे कि हाँ ठीक है, बट जो तुम हो वहीं पे, गलत हो तो गलत में और सही हो तो सही में। और फैमिली प्रेशर, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, फैमिली प्रेशर जो है वो बहुत बुरा होता है। फैमिली प्रेशर हर किसी को नहीं होता, बट जिसको भी होता है तो वो बहुत बुरा होता है। प्रेशर एक ऐसी चीज है जो इंसान को मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से इमोशनली हर्ट कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, जहां पे फैमिली सपोर्ट है वहां पे हर कोई ग्रो कर जाता है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा इंसान हो। फैमिली एक ऐसी चीज है जो हमारा सबसे पहला स्कूल है, जो हमें सबसे पहली शिक्षा देता है, चाहे वो एक बच्चा बड़े को सिखाए, चाहे एक बड़ा छोटे को सिखाए। उसके बाद में इसमें

0: बताया गया है कि स्कूल और एकेडमिक प्रेशर हर किसी की लाइफ में आता है। हर कोई शुरू से फेलियर नहीं होता, हर कोई शुरू से टॉपर नहीं होता। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, मेडियोकर भी होते हैं, टॉपर्स भी होते हैं, फेलियर्स भी होते हैं। तो फेलियर्स ऐसा तो नहीं है कि लाइफ के हर एक फेज में फेल करेंगे, और टॉपर्स ऐसा नहीं कि वो हर एक लाइफ में टॉप करेंगे। तो वैसा ही है, और हमें अपनी लाइफ को एक बैलेंस वे में यूज करना है। लाइफ एक ऐसी चीज है जो हम पे डिपेंड करती है, हाउ वी स्पेंड आवर टाइम इन आवर लाइफ। चाहे तुम अच्छे से कर लो, चाहे तुम जैसे, अगर तुम अपनी लाइफ अच्छी बनाना चाहोगे तो अच्छी बना सकते हो, बुरी बनाना चाहोगे तो बुरी बना सकते हो। सब खुद पे डिपेंड करता है। फिर आता है ड्रीम्स एंड गोल्स। ड्रीम्स वो हैं जब बचपन में बच्चों को पूछते हैं क्या बनना चाहोगे, जी हम तो डॉक्टर बनेंगे, जी हम तो पायलट बनेंगे, जी अब तो जनरली यही डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, ये वो एंड ऑल।
1: बिल्कुल।
0: बट ड्रीम जो है ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे वो तो बचपन में एक वो है कि बस एक ड्रीम, सपना है।
1: बिल्कुल।
0: यस, बस सपना है, सब कुछ आसान लगता है, हो जाएगा हो जाएगा। बट जैसे जैसे ग्रो करते हैं हम लोग, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो हम लोग लाइफ के बारे में थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं। और गोल एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अपने ड्रीम तक पहुंचने दे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अपने ड्रीम तक पहुंच नहीं सकते, बट वो है कि तुम्हारा, तुम ऐसा कर क्या रहे हो अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए, वो जरूरी है। और बड़े होते होते कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं सपने देखना, कि नहीं बस गिव अप कर देते हैं, बट वो अच्छी बात नहीं है। सपने देखना बहुत जरूरी है और उन्हें चेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे।
1: बिल्कुल।
0: फिर सबसे जरूरी जो अभी टीनेज लाइफ में चल रहा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अच्छे से यूज करे तो अच्छा, बुरे तरीके से यूज करे तो बहुत ही बुरा। तो वैसा है, और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना जो हमें बहुत अच्छा बना सकती है, और बनना चाहे तो बहुत बुरा भी बना सकती है। तो वो अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। और टीनेज माइंड में बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ। मैं भी टीनेजर हूँ, मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता है, और सोशल मीडिया से रिलेटेड मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता है। घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, बट स्टिल वी वॉन्ट टू डू इट।
1: फिर कैसे खुद को मैनेज करते हो?
0: वो हो जाता है, घर से मैं बैलेंसिंग बन के सब कुछ बैलेंस हो ही जाता है, वो करना ही पड़ता है। उसके बाद हमारे वेलबींग पे आती है बात, हमारे, हम लोग कैसे हैं, क्या हैं, क्यों हैं, सब हमारे मेंटल वेलबींग पे डिपेंड करता है। हम लोग कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं सामने वाले को, हमारे एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं, हमारे पोस्टर्स कैसा रहता है सबके सामने, वो सब डिपेंड करता है हमारे मेंटल वेलबींग पे।
1: जी।
0: और सबसे जरूरी है हमारे इमोशंस को, हम लोगों को कंट्रोल करना, हम लोगों को इमोशंस को समझना। इमोशंस एक पन्ने की तरह है, जब दिल करता है हवा आती है तो पलट जाते हैं, जब दिल करता है दूसरी हवा आती है तो पलट जाते हैं।
1: रेगुलेट करना, मतलब समय के हिसाब से हमें रेगुलेशन जो है इसमें जरूरी है।
0: हाँ जी
1: जी।
0: और वो वैसे में भी हो जाता है, हवा की तरह हवा आएगी तो वो पलट जाएगा पन्ना, और हवा जाएगी तो फिर से पलट जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: और इमोशंस जो है वो सब हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस हो जाते हैं। तुम कितना भी दिल में छुपाओगे वो तुम्हारे फेशियल पे आ जाएगा,
1: और वो तो हमारी लाइफ का पार्ट है, उनके बिना तो लाइफ शायद अधूरी है।
0: और इमोशंस को समझना जरूरी है।
1: जी।
0: इमोशंस ऐसी चीज है जो हमारे अंदर रहकर भी हमें हर्ट कर सकती है, और हमारे बाहर आकर भी हमें हर्ट कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि किसी को हर्ट करना है, किसी के इमोशन को हर्ट करना है इस टाइम पे बहुत बुरी चीज है। और टीनेज में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल चीज है। उसके बाद में सबसे जरूरी जो है हमारी लाइफ में, आज जो हम डिसीजन लेंगे वो हमारी कल की लाइफ डिसाइड करेगा। हम आज क्या डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे कल जो हम लोग बनेंगे, जो हम करेंगे, कल जो हमारा होगा उस पर सब डिपेंड कर रहा है हमारा आज का डिसीजन। तो डिसीजन सबसे सही होना चाहिए, वो हमें लेना सबसे जरूरी है। एक बार में सोच लिया कि ठीक है जी कल तो हमने पढ़ाई करनी है तो करनी है, तो सोचना और करना दिन रात का अंतर है। तो डिसीजन जो है वो एकदम ऑनेस्ट होने चाहिए, वाइज होने चाहिए, और रियल होने चाहिए बेसिकली डिसीजन। डिसीजन ऐसे नहीं कि जो हो नहीं सकता बट वी थिंक ऑफ कि चलो हो जाएगा, बट एकदम रियल होने चाहिए। उसके बाद में आपकी कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया आपकी बातचीत पे सब कुछ निर्भर करता है, कैसे आप सामने वाले के साथ बातचीत करते हैं वो सब अंदर आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है, आपको क्या संस्कार मिले हैं आपकी बातचीत से पता चलता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर आप नर्वस हो शायद आपको घर में वैसा ही माहौल हो, अगर आप बहुत अच्छे से हो शायद आपको घर में वैसा माहौल हो। तो हर किसी के लैंग्वेज, अब देखो लैंग्वेज डिफरेंस आता है, हर लैंग्वेज एक बैरियर बनता है स्टेट टू स्टेट।
1: बिल्कुल।
0: बट एक दूसरे के इमोशंस तो हर कोई समझ ही जाता है, इस लाइफ में ऐसा ही है कि इमोशन समझना बहुत आसान है, बेशक लैंग्वेज नहीं. लीडर आपको वहां नहीं बनना है जहाँ पे क्राउड है, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे आपको सबको डेमोन्स्ट्रेट करना है, जहाँ पे आपको सबको कंट्रोल करना है, वहां पे लीडर नहीं बनना है. लीडर आपको अपनी लाइफ में बनना है.
1: अक्सर हम दूसरों की लाइफ में बनते हैं.
0: हमें खुद को लीड करना है, औरों को लीड नहीं करना है. औरों को लीड करने से पहले हमें खुद को लीड करना है, खुद की लाइफ का लीडर बनना है. और वो लीडर आप तब बन सकेंगे जब आप एकदम इमोशन फ्री होंगे. इमोशन फ्री इन द सेंस, ऐसे नहीं इमोशनलेस है कि दूसरों का पता नहीं चल रहा. लीडर इन द सेंस मतलब आप सबकी दुख स्थिति को समझ सकते हैं, सबकी खुशी को समझ सकते हैं, खुशी को छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं. एकदम डाउन टू अर्थ हो जाओगे तब आप लीडर बन सकते हो अपनी लाइफ
1: जी.
0: फिर सबसे जरूरी आता है हमारी लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स स्कूल में हम लोग बहुत कुछ स्किल्स सीखते हैं. स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टीचर्स होते हैं जो हमारी बहुत केयर करते हैं और कभी कभी डांटते भी हैं, बट वो डांटना सही होता है.
1: बिल्कुल.
0: तो लाइफ स्किल्स हमें स्कूल सिखाता है, बहुत सी लाइफ स्किल्स सिखाते हैं और उसको स्किल्स को सबको इम्प्लीमेंट करना हमारी लाइफ सिखाती है. लाइफ के फेज, लाइफ की टाइमिंग जो है, मतलब लाइफ में जो भी हमारे अप्स एंड डाउन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो एकोमोडेट करना है वो हमारी स्किल्स काम आती है हमारी लाइफ में. तो हमारी लाइफ जो हमें स्किल्स को वहां पे इम्प्लीमेंट करती है.
1: बिल्कुल. तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से जो है निमृत जी ने अपनी बुक में ये छोटे छोटे से टॉपिक्स को पार्ट बनाया है और वाकई में ये रियल जिंदगी से जुड़ी बहुत ही खास बातें हैं. आप सभी अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सचमुच दोस्तों आपको लगेगा कि नहीं, ये हम सभी की जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं. तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे हम खुद की वैल्यू को कर सकते हैं, कैसे हम खुद को समझ सकते हैं. निमृत जी आपने इसमें सबसे पहला टॉपिक यही लिया है कि खुद को जानना जो है बेहद जरूरी है. लेकिन आपको क्या लगता है कि आज की डेट में हम खुद को जान पाते हैं?
0: शायद नहीं.
1: नहीं जान पाते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है.
0: समय नहीं है, दूसरा हम लोग दूसरे के ओपिनियन पे डिपेंडेंट,
1: दूसरों के. और देखा देखी वही सोशल मीडिया का यूज हम ज्यादा करते हैं. तो आपने भी यहाँ पे जिक्र किया था कि सोशल मीडिया का मेरा भी मन करता है लेकिन मैं खुद को मेंटेन करती हूँ. तो दोस्तों मन सबका करता है, ऐसी बात नहीं है. अपॉर्चुनिटीज सबके पास होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है तो वो तब जाके इन फील्ड्स को चूज करते हैं. सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटी है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ के लिए बेटर क्या है और हमें किस तरह से इसको और ज्यादा बेटर बना सकते हैं. तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ.

0: दोस्तों इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस खास बातचीत को निमृत जी के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, प्रेरणादायक बनाते हैं। तो निमृत जी, हमने बहुत ही खास बातें जो है अपने दोस्तों के साथ साझा की है कि किस तरह से आपने किस किस टॉपिक को इस बुक में इंक्लूड किया है, बच्चे से जुड़ी को, क्योंकि जब हम खुद से जुड़ी बातें शेयर करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं और समझ पाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो अब इसके आगे का सफर, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, 10th क्लास का वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे पढ़ाई का, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि आप इसमें एडजस्ट कैसे, आपने जैसे कहा ना कि कुछ मन करता था कुछ दिन लिखने के लिए, कोई दिन ऐसा भी होता था कि बिल्कुल मन नहीं करता था लिखने के लिए, तो वहां पे कहीं आपको ऐसा लगता था कि नहीं मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, शायद मुझे नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कभी हुआ?
1: शुरुआत में मैंने 10th क्लास को इतना इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया था और मुझे लगता है कि मेरे से पढ़ाई एडजस्ट हो जाती है शायद।
0: मतलब आप टाइम एडजस्ट करते हो, प्लानिंग करते हो, या फिर जैसे जब मन किया तभी लिखना, उस इस तरह कैसे होता है कुछ?
1: एक सबसे सच बात कहूँ तो टाइम टेबल डजंट वर्क एट ऑल। आज बना दो 5 बजे उठोगे, कल 5 बजे अलार्म बजेगा, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 6 बजे जाते हैं और मेरे साथ एक्चुअली ऐसा होता है, तो टाइम टेबल मेरे बस का नहीं और टाइम टेबल एक्चुअली इस टाइम पे किसी के भी बस का नहीं है, बहुत ही रेयर होता है
0: जी।
1: तो जैसे स्कूल से आने के बाद, स्कूल सुबह जाते वक्त तो मूड में ऐसा है कि बस स्कूल जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, और पहले होता था कि स्कूल जाने का प्रेशर होता था, बट अभी बहुत माइंड फ्री होकर स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाके बहुत खुशी होती है पता नहीं क्यों। और फिर उसके बाद में स्कूल से मेरा ट्यूशन होता है, ट्यूशन से घर आती है, तो मैं मतलब घर पे 5 बजे पहुंचती हूँ, उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है 5 से 10 के बीच, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं 1 मिनट भी नहीं जा सकती, नींद बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: तो इन 5 घंटों में अब मेरा मन करे तो मैं पढ़ूं, मेरा मन करे तो मैं लिखूं। कभी टेस्ट होते थे तो टेस्ट का पढ़ाई करना है, और 10 बहुत जरूरी है जैसे आपने भी कहा, और वो एक्चुअली वैसे बहुत जरूरी है बोर्ड्स हैं। और फिर उसके बाद मैं जब मन करता था तभी लिखती थी, थोड़ा किया तो अभी लिख दिया, थोड़ा किया तो नहीं लिखा, कभी तो बिल्कुल ही नहीं लिखती थी, ऐसे नहीं कि 5 महीने लगातार ही हर रोज दिन रात एक करके, ऐसे नहीं, जब भी मन करता था तो कभी लिख देती थी, कभी रात को नींद उठती थी, जैसे अगले दिन छुट्टी है तो वो तो होना ही होना है, रात को नींद खुलनी ही खुलनी है, तो उस तब थोड़ा ऐसे ही बस थोड़ा ऐसे हो जाता था ट्रॉमेटाइज ही, क्या करे क्या करे क्या करे, फिर उस टाइम थोड़ा लिख लिया वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके वैसे वैसे। और ऐसा नहीं कि 10th की पढ़ाई को बिल्कुल वो नहीं किया, अब एग्जाम बहुत जरूरी है, 10th क्लास बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई और इसको बहुत उससे मैनेज किया है मैंने
0: जी। तो आगे जो है आप इस फील्ड को आगे लेकर जाना चाहेंगे, मतलब लिखने का शौक जो है आप इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे आगे? अगर हम बात करें इन फ्यूचर आपका बच्चों का सपने, जैसे हमने आपने इसमें भी बात की है कि अपने सपने होते हैं उन्हें अचीव करना होता है, तो आपका जो है बड़े होकर क्या सपना है बनने का?
1: तो अभी जैसे आपने कहा कि इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो अभी मेरा बोर्ड्स 5 महीनों में है, अभी मेरे पेपर चल रहे हैं, अभी मेरा बोर्ड्स 5 महीनों में, तो मुझे उसके लिए तो जी तोड़ के मेहनत करने पड़ेगी क्योंकि बहुत जरूरी है ये मेरे लिए। तो ऐसा है कि अभी तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा थोड़ा मैं कर सकूं, बट एकदम ना हो पाए, 90% स्टडीज को तो 10% टेस्ट को बिल्कुल छोड़ना इज नॉट गुड, क्योंकि बिल्कुल छोड़ दिया तो बाद में पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो अभी जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी एक हैंड रिटन मैगजीन होती है वहां पे बिलासपुर में पब्लिश होती है, मैंने उसके लिए अपनी एक कविता जो है वो दी है, और कविता का ये है, कविता का जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि कभी कभी जो खामोशी है वो भी बोलती है, और ये बहुत अच्छा लगा उन्हें और उन्होंने कहा कि वो पब्लिश करेंगे, वो अगले माह तक पब्लिश हो जाएगा। और ऐसे से छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी जहां जहां मुझे मिलती है मैं वहां पे एनरोल होना चाहूंगी, बट एकदम इसे छोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग, तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ दूंगी। और मेरे आपने ड्रीम के बारे में बात की, तो बचपन से सुना है कि डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है, बट मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ, मेरा दिल एकदम छोटू सा है, तो ये डॉक्टर इज नॉट मेरे बस का नहीं है, होता सब कुछ बस का है
0: जी,
1: करने की देरी
0: नहीं। मतलब आप बाकी में करना क्या चाहते हैं, मतलब आपके मन से जो आपकी इच्छा है वो आप क्या करना चाहते हैं?
1: मैं फ्लावर बनना चाहती हूँ।
0: ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बस की बात है। देखिए मेहनत तो हर कहीं लगेगी, है ना। तो सही बात यही है कि हमारी जो एक कहते हैं ना इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम किसी चीज को अगर बोलेंगे तो बच्चे फिर ना एक साइड ध्यान लगा पाएंगे ना दूसरे साइड ध्यान लगा पाएंगे और फिर वो एक बीच मझधार में फंस कर रह जाते हैं, फिर पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं गिल्ट होता है और बच्चों को भी रह जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई है निमृत जी ने कि वैसे तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर बनना है लेकिन मेरी जो इच्छा है वो लॉयर में, मुझे लॉयर पसंद है बनना। तो जरूर जैसा इनका मन करेगा, जैसे जहां ये कंफर्टेबल खुद को फील करेंगी ये उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगी, है ना। तो निमृत जी अभी हम बताना चाहेंगे अपने दोस्तों को कि अगर ये बुक जो है वो परचेज करना चाहें लेना चाहें तो ये उन्हें कहाँ मिल सकती है, ऐसे अगर आपके मतलब हमारे दोस्तों को बताना चाहें तो प्लीज हम बताइए।
1: जी हाँ, तो जैसे ही मैंने पब्लिश करवाई थी बुक तो थोड़े दिनों बाद मैं खुद स्टोर्स पे ये रखवाने गई थी ताकि मेरा शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मैंने उनसे खुद रखवाई है, तो ये धर्मशाला स्टोर है वहाँ पे मैंने अभी रखवाई है, जैसे गुरुजन स्टोर है, गुरुजन मार्केटिंग, प्रीति स्टेशनरी स्टोर है, फिर अमर स्टोर है, फिर डिडबाल बुक स्टोर है, बहुत बड़ा बुक स्टोर है
0: जी।
1: तो वहाँ पे मैंने रखवाई और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मुझे ये आगे बढ़ाना चाहिए।
0: बिल्कुल, और मैं ये भी अपने दोस्तों तक बात पहुंचाना चाहूंगी कि इस सफर तक पहुंचने के लिए अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आई या फिर इजी रहा?
1: फाइनेंशियली मुझे तो कोई मुश्किल नहीं आई, मेरा तो सब फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट मेरे फादर साहब के पास है
0: जी।
1: तो उन्हें आई होगी तो मालूम नहीं आई होगी फॉर श्योर, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया
0: जी।
1: और
0: नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि जैसे अगर बच्चों में ये होप हो कि हम भी लिखें, मतलब उनका होता है ना कि कुछ बच्चों में शौक होता है लेकिन उन्हें ऐसा लगे कि नहीं ये बहुत हाई लेवल का होगा या बहुत फाइनेंशियली इसमें खर्चा आएगा या वो कुछ, मतलब होता है बच्चे सपने वही टूटते रह जाते कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं उस वे में दोस्तों तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूं कि इजी रहता है या मुश्किल रहता है।
1: जी हाँ, अब हर अपने परिवार के सबको लगती है, तो मुझे भी लगा था कि जब इसका बताया उन्होंने प्राइस की इतना होएगा तो मुझे लगा कि शायद मेरे फैमिली के लिए ये ज्यादा हो जाएगा, बट मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं जितना होगा हम उतना देंगे, बस तुम निकलवाओ, तुम अपना जो करना चाहते हो वो करो। वो चाहते हैं कि जो शायद वो ना कर पाए वो हम लोग कर सकें, और हर एक माँ बाप की यही वो होती है इच्छा कि शायद जो वो ना कर पाए उनके बच्चे कर सकें।
0: जी दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ पैसों की वैल्यू नहीं, बच्चों के सपनों की वैल्यू, उनकी इच्छा की वैल्यू होती है। तो मेन बात यही पहुंचाना चाह रही थी, खास करके पेरेंट्स तक, कि कहते हैं ना कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास समय नहीं है या अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी ये फालतू की चीजें हैं और इस पे पैसा खर्च करना बेकार है। तो ऐसा नहीं है, कुछ समय के बाद उन्हीं पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि काश उस समय हमने बच्चों की बात सुन ली होती, समझ ली होती, तो शायद आज वो एक बेहतर जगह पे होते। तो जाते जाते आप हमारे युवाओं को, जो ये आपने बुक लिखी है, एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें, किस तरह से एक प्रेरणादायक जो है लाइफ में बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी मैच्योरिटी है वो 18 साल, जो हमारा 18th बर्थडे होता है तब नहीं आती है, वो तब आ जाती है जब हम समझ आते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमें खुद पर डिपेंडेंट होना मैटर करता है। हमारे लिए हमारी फैमिली सब कुछ होती है, हमारी फैमिली ही हमारे सबसे सपोर्टिव है, वही सब कुछ है हमारे लिए। फैमिली बुरा कहती है तो भी अच्छा के लिए कहती है, और अच्छा कहती है तो भी अच्छे के लिए कहती है। मेरा सबसे जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप जो भी ड्रीम स्टार्ट करना चाहते हैं, एज को बीच में मत लाइए, एज कोई बैरियर बनता है, एज मैटर नहीं करती आपके ड्रीम्स को चेस करने के लिए। मैं भी एक बहुत छोटी उम्र की हूँ और मैंने ये ड्रीम चेस किया, ये बहुत अच्छी बात है, और जिन जिनको पता चला उन्हें भी बहुत शौक लगा ये जानकर और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम को चेस करने के लिए अपनी एज मत देखिए, बस अपने सपने सजाइए और उन्हें अचीव करिए।
0: जी बिल्कुल, और निमृत जी एक और बात कि एक तो ये बात कि आपका यहाँ तक पहुँचने में जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, तो आप रेडियो के माध्यम से किस किस का थैंक यू करना चाहेंगे वो भी बताएं, लेकिन साथ ही एक बात और कि आपकी जो ये बुक है, ये जो किताब है आपकी, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, तो हो सकता है लैंग्वेज बैरियर जो है कुछ बच्चों को आए, वो पढ़ना भी चाहें लेकिन इसमें जो है हिंदी में नहीं है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए एकदम नॉर्मल, एकदम लीन इंग्लिश लिखी है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी के टाइम में तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो सभी को आती है, सो वो समझ सकते हैं आसानी से।
0: जी बिल्कुल, तो साथ में ही आपके यहाँ तक पहुँचने में आप किस किस का धन्यवाद करना चाहेंगे?
1: जी, मैं अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का और उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे लिखने में कभी भी मेरे को मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया कि तुम मत लिखो, तुमसे नहीं होगा, मुझे किसी ने डीमोटिवेट नहीं किया। मेरे टीचर्स का मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूंगी। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरी मदद की है।
0: जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
0: और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे साथ जो है वो निमृत जी के मम्मा भी इस समय स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो मैं उनकी भी एक छोटी सी टॉक आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे का एक सफल होना सिर्फ अकेले का सफर नहीं होता है, माँ बाप का भी उतना ही साथ रहता है, उतना ही सहयोग रहता है और बहुत जरूरी होता है ये साथ, उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें यहाँ तक पहुँचाना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि निमृत जी के मम्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हम कैसे आप सभी तक ना पहुंचाएं, क्योंकि एक बच्चे की मेहनत के पीछे माँ बाप का फुल सपोर्ट होना बेहद जरूरी है। तो आइए स्वागत करते हैं ऋषिका जी का हमारे इस खास बातचीत में। तो स्वागत है ऋषिका जी आपका। जी, तो मैम मैं ये जानना चाहूंगी आखिर में कि ये जो निमृत जी आपकी बेटी ने इतना मतलब कि गर्वान्वित वाला काम जो है वो किया है, बुक लिखना एक बहुत बड़ी बात है और वो भी कम उम्र में, अभी 10th क्लास में ये पढ़ रही है, तो आपको कैसा लग रहा है?
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि अब इसकी एज बिल्कुल छोटी सी है, पर फिर इसने बोला कि मुझे शौक है लिखने का।
0: जी,
2: तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू कर जहाँ तक होगा मेरी हेल्प की, जहाँ तक हम लोगों की जरूरत है वहाँ तक मैं आपकी मदद करूंगी।
0: जी,
2: फिर मैम जैसे इसने बोला कि मेरे को लिखना है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला करके देखा और हो जाता है तेरे से। तो फिर मेरा ये था कि मैं, मुझे बहुत शौक था शायरी।
0: अच्छा, आप भी लिखते थे?
2: लिखती थी सर मैम, स्कूल टाइम से मेरे को बहुत शौक था।
0: जी,
2: आज दिन तक मेरे को शौक है शायरी का। फिर मैंने सोचा हम लोग तो आगे नहीं बढ़ पाए किसी वजह से, पर चलो
0: बच्चे
2: करने के लिए बोल रहे तो हम इसको क्यों रोके,
0: सपोर्ट करें। बिल्कुल
2: जी, इसलिए मैंने इसको काफी सपोर्ट किया, मैंने बोला चल कोई बात नहीं।
0: तो आज कैसा लग रहा है आपको?
2: मैम बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी,
2: कि बच्चा इतने आगे तक गया, आज इसकी जिंदगी का ये पहला स्टेप है।
0: पहला स्टेप है बिल्कुल,
2: यहाँ से ही आगे जाएगा बच्चा शुरू से, अगर सीढ़ी का पहला स्टेप है तो धीरे धीरे ऊपर तक। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से मतलब ये और भी आगे जाके हम लोगों को काफी प्राउड फील करवाती रही ऐसे ना।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए कितनी अच्छी बात है और अनिमृत जी के मम्मा को कितना अच्छा महसूस हो रहा है। कहते हैं जब बच्चे हाई मंजिल तक मतलब एक ऊपर सीढ़ी के माध्यम से ऊपर तक पहुंचते हैं तो सिर्फ उन्हें ही खुशी नहीं होती है, उनके शिक्षकों को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, उनके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो ये बहुत एक सुनहरा सा अवसर होता है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आप भी शायरी लिखते हैं, तो बिल्कुल हमारे दोस्तों तक एक शायरी पहुंचाई जाए।
2: ठीक है मैम, मैं तो सारे बच्चों को, जो भी इस एज के बच्चे हैं, मैं तो सभी को ऐसे ऐसे मतलब अपनी तरफ से एक शायरी बता देना चाहती हूँ।
0: जी,
2: खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, जलता हुआ दीपक रोशनी दे आपको, जलता हुआ दीपक रोशनी दे आपको, हम तो आपको कुछ भी ना दे सके, हम तो आपको कुछ भी ना दे सके, मगर देने वाला हजार खुशियां दे आपको, देने वाला हजार खुशियां दे आपको। मैम जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं
0: जी,
2: और भगवान जो है सहारा भगवान का ही है मैम, बच्चा जब पेट में होता है तब उनको भगवान का ही सहारा होता है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मतलब कि बच्चा अगर हम लोग तो माँ बाप तो जन्म ही देने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे जैसे इसको मतलब भगवान का आशीर्वाद मिला, वैसे सभी बच्चों को भगवान का आशीर्वाद मिले।
0: बिल्कुल, और साथ ही पेरेंट्स का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है मैम, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर जब पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो बच्चे कहीं ना कहीं हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छी बात जो है ये मैम ने कही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी इस बातचीत से जो है अपने बच्चों की जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और बच्चे भी अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम खुद अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझेंगे, हम खुद को नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है आज की ये बातचीत आप सभी को पसंद आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो दोस्तों फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ। फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता, और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दे।

0: मम्मी मम्मी मम्मी,
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन है दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन है शाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मेरी जॉब लग गई।
1: सच्ची? थैंक यू, पेड़ तो छू।
2: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
3: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
2: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
3: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
2: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, और जीनियस?
4: यूर अ जीनियस।
2: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये कोई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
7: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
8: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
8: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
10: गजब बेइज्जती है।

0: श्रोताओं तो सारे ही सुनिया गीत शुरुआत हाँ इस गीत करने की थी है कने कार्यक्रम च हाँ आज गल बात करनी है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जड़े से आज हाँ बना दिन तो श्रोताओं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जड़े से पूरी दुनिया च आज हाँ जड़े से बना दिन कने आज दुनिया च गल करिए धरती प्रकृति दी तो प्रकृति जो बचाने वास्ते जड़ा गल है स्या जहाँ इदे उपर जरूर करनी है कने जड़ा माटी दी मेह कार्यक्रम दा जड़ा सफर है से तुह तक चलिया है कने माटी दी मेह कार्यक्रम दा सफर यही तुह जो दर्शांदा है कि जड़ा प्रकृति या धरती स्या वास्ते कितनी ज़्यादा जरूरी है। अगर अहां दी मिट्टी जड़े से सुरक्षित रहेंगी ताई अहां दा जड़ा वजूद जड़े से सुरक्षित रहना है या सुरक्षित जड़े च रहना है कने अहां दी जड़ा संस्कृति है इसी कने जड़ा अहां दी संस्कृति कने जड़ा अहां दी धरती माँ है से अगर अहां तिहा जो सजेई करी रख दे सजेई कर रखने दा अगर अहां संकल्प लैन दे तो कुथी ना कुथी अहां अपनी जड़ा धरती माँ है तो तिहा जो बचाई करी रखते न। इसी कन्ने पहले श्रोता हाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तो हंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला चे ठीक ठाक है ना
1: जी मैडम
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी तो हम कुछ ते बोला दे कन्ने तो हंदा ना किया है जी
1: पहचान लिया मैडम
0: जी धर्मशाला ते विजय जी
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी तो विजय जी क्या कामकार तुम्हें लग गया क्या करा दे
1: मैडम बस रोटी खाती है
0: जी तो विजय जी आज जहाँ जिड़ा खास दिवस मना दे न से बना दे न विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस तो तुम्हें क्या लगता
1: मैडम बड़ा
0: जरूरी है जी जरूरी है
1: हाँ जी
0: जी पर हाँ उस तरीके ने अपनी प्रकृति दी रक्षा जड़े से करा दे भी कि नहीं करा दे
1: मैडम भी करना
0: जी ठीक है जी करना चाहिए दी से तो ठीक है मैं तुहंदी गल ते सहमत है पर हाँ उस पर विचार जड़े से करा दे भी कि नहीं करा दे काम जड़े से करा दे कि नहीं करा दे हाँ
1: मैडम यहाँ पर करा दे
0: ना जी करा दे तो हाँ
1: जी
0: जी चलो अच्छी गल है ना जी वैसे तो हाँ अपनी जिंदगी च अगे बढ़ा दे जिन्ना तुह दिखा दे आस पास अपने जड़ा सड़कां दा जड़ा रूप है से फोर लाइन च बदलूई है ना जी पेड़ पौधे जड़ा ना से सारे बड़ी ते या रोड जड़ा से खुला करने वास्ते हर जगह दिखा देना पहाड़ जड़ा ना तिना जो ये करी ते ना जी जी जी तो तिने भी प्रकृति पर बड़ा ज्यादा नुकसान जड़ा से
1: बड़ा
0: जी जी अपना फायदा तो हाँ दिखा दे पर फायदा भी है पर वही चीज़ का नुकसान भी हाँ जो बड़ा कुछ दिखने जो मिला था ना जी
1: मैडम जी जितने रूप कपड़ होंगे
0: जी ता
1: और की के नहीं
0: जी जी
1: जी
0: जी
1: जी,
0: जी कहना मौसम जी तो हाँ इतना ज्यादा बदलाव दिखा दे उन्हें ना
1: जी
0: धर्मशाला से तो पहले इतनी ज्यादा ठंड होती थी पर उस तरीके ने है नहीं ना जी उन
1: ना जी ना
0: जी पहले तो बड़ा ज्यादा मौसम
1: मैडम जी अपनिया पोस्टा जैसे के अंदर रहंदे कड़ी ठंड
0: जी अच्छा अच्छा
1: हां जी
0: जी दिखाओ तो हां

0: नेचर जो भी दिखा दे होने ना, मौसम दा बदलाव भी दिखा दे होने ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, एक हफ्ता जेड़े आ हम अंदर ही रहंदे सी, जेड़े बाहर नहीं निकलदे सी
0: जी। अच्छा, एक हफ्ता जेड़े से तो हां घर ही ची रहंदे थे, कि इतनी ठंड होती थी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, कना उन क्या तो जो बदलाव लगा दा?
1: नहीं मैडम जी, हम तो जानी रही हां
0: जी। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही खत्म है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो विजय जी, आज तो हम कुंडिया गीत सुनना पसंद करके।
1: और सुनाई जाए तो हम मुझे बाग्या
0: जी, निम्बुआ दे बागे गीत सुनना है तो हाँ
1: जी
0: जी, जरूर तो हम दी जिड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हम
1: ठीक है मैडम
0: जी। कशु तो हम कल बात हाँ करा दिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। पर्यावरण का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी संस्कृति कन्ने कन्ने धरती माता का जिड़ा ख्याल है से रखना भी यहाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कन्ने तो सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। समय दी ओर अगर अहां नज़र दौड़ांदे न तो 2:14 कार्यक्रम च होई न कने इसी कन्ने अहां कार्यक्रम दे सफर जो थोड़ा दे अग्गे बढ़ांदे न कने तुहां जो अगली फरमाइश दी ओर लेकर चलदे न।

0: तो श्रोताओं तो सारे सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। अगले जेड़ा श्रोता ने से भी यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना, कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
2: नमस्कार
0: जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
2: जी? धन्यवाद
0: जी। क्या काम कार तुहां छेड़िया, क्या करा दे?
2: अस तो आरे प्रोग्राम में आए जान से कर रहे हैं, फोन पैसे खत्म हुए हैं, फोन में पैसे पाए हैं
0: जी। अच्छा, फोन में पैसे खत्म हुए थे?
2: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। और ठीक ठाक है ना?
2: ठीक ठाक, बहुत बढ़िया
0: जी। यहाँ भी ठीक ठाक है जी।
2: बरखा बरखा हुई तो है
0: जी? बरखा तो नहीं हुई?
2: नहीं हुई,
0: नहीं।
2: कल कल
0: जी, कल तो हुई थी जी, आज नहीं हुई ना जी जी
2: तो श्राद्ध
0: जी जी आज ते श्राद्ध जेड़ा ने से शुरू हुई है ना जी। जी आज पहला श्राद्ध है ना जी।
2: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। इसी कन्ने आज यहाँ जेड़ा खास दिवस बना दे ना से बना दे ना, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ना जी।
2: हाँ जी,
0: आज यहाँ जेड़ा खास दिन बना दे ना से बना दे ना, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ना जी।
2: अच्छा
0: जी जी, पर्यावरण जेड़ा से यहाँ वास्ते कितना ज्यादा जरूरी है जी।
2: जरूरी है
0: जी, तो मैं क्या लगता कितना की जरूरी है?
2: बहुत ज्यादा काम करना
0: जी जी।
2: पानी बना रहे
0: जी जी
2: है?
0: जी जी बिल्कुल जी, पर्यावरण बिना तो हाँ अधूरे ना जी।
2: कुछ नहीं मिलना, चीज नहीं मिलना, तो नुकसान
0: जी। ठंडी हवा, पानी,
2: सब
0: जीव जंतु अन तिना दी गल करिए
2: सब
0: जी जी।
2: पर्यावरण तो बहुत जरूरी है
0: जी
2: जी।
0: ता मेघना जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत चिड़ाई से सुनना पसंद करके
2: आज सुनाई दिया जो निंद्रे पारे पारे
0: जी। निंद्रे पारे पारे,
2: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। जरूर है भजन तो हाँ तक पहुँचा दे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
2: वहाँ 9 बजे भी आवाज आ चला ना
0: जी,
2: रात 9 बजे इन्हें प्रोग्राम में सुने ना था
0: जी जी जी जी जरूर जी। सुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हां दा।
2: बहुत बढ़िया लगता है
0: ना जी,
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम
0: जी। धन्यवाद जी।
2: हां
0: जी, तो श्रोताओं चलते हैं ना तुहां तक पहुंचाते हैं ना ए फरमाइश।

दर्शतां तो सारे सुनिया एक गीत ए भजन ए भजन हाँ पहुँचाया है मेघना जी तक कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। इसी कने हाँ फिर ते वापिस आई हूँ अपनी गलबात उपर तशो तो गलबात आज हाँ करा देन जरूर तो हाँ अगर कार्यक्रम जिड़े से शुरू ते सुना देंगे तो तुहां जरूर सुनी ले आना है कि कार्यक्रम जिड़े से आज हाँ कैदी पर गलबात जिड़े से करा देन गलबात आज हाँ करा देन खास दिन जिड़े से आज हाँ बना देन तुहां वास्ते भी खास है कन्हा वास्ते भी खास है क्योंकि हर दिने दी अपनी जिड़ा खासियत है से जरूर होंदी है। विश्व पर्यावरण दिवस जिड़े से आज हाँ बना देन 26 सितंबर 2026 जो कने दिने दी गल करिए तां शनिवार दा ये दिन जिड़े से तो हाँ जरूर इंजॉय करा देने न कने अपने जिड़ा गलबात तो यानी कि अपने जिड़ा काम कार हैं सभी जरूर करा देने न अहां दी जिड़ा मिट्टी है अहां दी जिड़ा हवा है अहां दा जिड़ा पानी है से कुथी ना कुथी अहां जो ताज़ी हवा जिड़े से प्रकृति ते मिलती है या नेचर ते जिड़े से अहां जो मिलती है पर अहां किस तरीके ने नेचर दी जिड़ा कदर है या किस तरीके ने उसकी जिड़ा रक्षा है से करते हैं ना क्योंकि जिड़ा हवा है हवा जिड़ा है से अगर हाँ पेड़ लगाते हैं जितना हो सकता है उतने अगर हाँ पेड़ लगाते हैं ताई अहें वो ताज़ी जिड़ा है से हवा मिलती है। आसमान छोड़ने दी हर किसी दी जिड़ा जीद है से जरूर है कि हाँ आसमान च उड़ना है पर आसमान च जिड़ा आसमान ते जिड़ा हाँ जो शुद्ध हवा जमीन दी जिड़ा खुशबू है मिट्टी दी जिड़ा खुशबू है अगर अहां नेचर कन्ने थोड़ा देर समय बिताते न तो कुथी ना कुथी अहां दा जिड़ा मन है से भी शांत हो जाता है कने तनाव मुक्त जिड़े से अहां जरूर हो जाते न तो शुरू इस खूबसूरत दा जिड़ा सफर है या हाँ बोली सकते माटी दी मेह कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है तिस च गलबात भी बड़ी प्यारी है से कुथी ना कुथी अहां जो अपनी मिट्टी कन्ने जोड़ी के रख दी है या अहां दे पर्यावरण कन्ने जोड़ी के रख दी है पर अहां किस तरीके ने अपने पर्यावरण दी जिड़ा रक्षा है से कर दे न हर कोई तरक्की दी दौड़ च निकला दा हर कोई तरक्की करना चाहता ठीक है तरक्की करना भी जरूरी है पर अहां कुथी ना कुथी ये भुलिया दे कि पेड़ अहां वास्ते कितने ज़्यादा जरूरी है न या अहां दी जेड़ा प्रकृति है या अहां दा जेड़ा पर्यावरण है से कितना ज़्यादा जरूरी है तरक्की अहां हर जगह करा दे या रोड दी गल करिए ठीक है सभी सही है पर अगर अहां पेड़ कट देना तो पेड़ जरूर लगा प्लास्टिक दा जेड़ा कम ते कम यूज़ करा करने है कई बार अहां घरे दी साफ सफाई कर देन कने सही कूड़ा जिड़ा कचरा है से अहां कुथी नदी नालिया च या नाले च जिड़ा है से फेंकी देन या आस पास कुथी भी अहां फेंकी देन तो वहां दिखते भी होने ना अपने आस पास या कई बार अहां ही खुद ही ये जिड़ा काम में से करना शुरू करी देन तो जरूर अगर अहां घरे दी साफ सफाई कर देन तो कुथी ना कुथी अपने समाज दी अपने मोहल्ले दी भी साफ सफाई करनी है क्योंकि से यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ किस तरीके ने अपने समाज दी जिड़ा साफ सफाई है या अपना वातावरण जिड़ा है से जो कितना की साफ सुथरा जिड़ा है से रख देन इसी कन्ने अहां फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाना है क्योंकि श्रोता जिड़ा ने से व्हाट्सएप के माध्यम ने अहां तक फरमाइश जिड़ा से पहुँचा देन कने तिना दा नाम है शमशेर सिंह जी कने से रहने वाले न दरगाटा ते तो जरूर तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाना है तिना गीत की फरमाइश की है चल चलिए मनी महेश कने इस गीत जो गया है ईशांत भारद्वाज जी ने तो जरूर ये गीत तुहां तक कहाँ पहुँचा देना तुहां सारे भी इंजॉय करा

तो श्रोताओं तो सारे सुनिया एक गीत ए फरमाइश फरमाइश दे वादा हाँ फिरी ते गलबात पर पूछी आंदे न 26 सितंबर दा ए दिन है कने आज जहाँ जेड़ा खास गलबात करा दे न क्या 26 सितंबर दे कैलेंडर च जेड़ा आजकना जेड़ा दिन है से खास कहो है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस दे बारे च आज जहाँ जेड़ा से गलबात करा देन। तो सच्ची गल है कि पर्यावरण का स्वास्थ्य इसका ख्याल रखना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पर्यावरण ही हाँ वास्ते अहां दी जिंदगी का जिहड़ा अहम हिस्सा है यहाँ ये बोली सकते कि जिंदगी च अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा रखती है चाहे अहां कितने भी डिजिटल दौर च कहने नहीं चली आन या एसी दी हवा लेना हाँ जो पसंद है या एसी च हाँ बैठी करी जेड़ा है से आराम ने हवा लेंदे न पर कुथी ना कुथी से सुकून जेड़ा है से यहाँ जो बिल्कुल नहीं मिलता है जेड़ा हाँ जो अपनी माटी कन्ने जोड़ी के रखता है या माटी दी जेड़ा खुशबू है जेड़ा सौंदी सौंदी खुशबू है से कुथी ना कुथी यहाँ जो मिट्टी कने जोड़ी के रख दी है हवा हवा हाँ जो एक अच्छी ऑक्सीजन या ताज़ी जड़ा हवा है से हाँ जो मिलती है कने हाँ सांस जड़ा है से ले पाते न कने हाँ दा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है कने कुथी ना कुथी पेड़ ही हैं जड़ा हाँ जो फल भी दिंदे न हर चीज़ हाँ जो दिंदे न फिर भी हाँ कुथी ना कुथी इसा प्रकृति का जड़ा नुकसान है से ज़रूर कर देन तो इसी कन्ने आज हाँ एक खास गलबात जेड़ा से करा दे न कने तो हाँ सारे कार्यक्रम कन्ने जुड़ियो न कने फेसबुक लाइव पर भी तो हाँ जरूर दिखी सकते जितने भी लिसनर हैं तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है तो हाँ भी अपने कमेंट दे जरिए दसी सकते कि पर्यावरण दा जेड़ा स्वास्थ्य दिवस है या पर्यावरण दा जेड़ा ख्याल रखना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस आज हाँ बना देन तो पर्यावरण अहाँ वास्ते कितनी ज़्यादा ज़रूरी है मिट्टी या माटी अहाँ बोली सकते कितनी अहाँ वास्ते ज़रूरी है कने कार्यक्रम में माटी दी महक से तो जो कुथी ना कुथी अपनी प्रकृति कन्ने जोड़ी करी रखता है तो इसी कन्ने अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो फ्री थे थोड़ा दे आगे बढ़ाना है कने तो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चल देना क्योंकि इंतज़ार तुहां जो भी है कने इंतज़ार अहां जो भी है इंतज़ार जेड़ा है से ख़त्म कर देना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देना।

0: हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो दो शशि कने तय गीत ए भजन अहाँ पहुँचाया मैडी नेगी जी तक कने से जरूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने अगले जेड़ा श्रोता ने से अहाँ कने जुड़ चुके न कर दिन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: जी? रंजीत बोला जी, साथ रहते
0: जी। रंजीत जी क्या हाल चाल है शाहपुर वाले दे?
1: शाहपुर वाले बढ़िया हाल चाल मैंने जी।
0: जी क्या काम कार छेड़े जी तुहां, क्या करा दे?
1: हां जी हां जी,
0: काम कार क्या छेड़े जी तुहां, क्या करा दे?
1: कम कार छेड़े खवा दे लोकां ने रोटियां।
0: जी जी, अज ते वैसे भी श्राद्ध शुरू है ना जी?
1: हां जी
0: जी, अज ते श्राद्ध जेड़ा न से शुरू है ना जी?
1: हां जी हां जी, बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी जी
1: जी। हां जी, घटिया ना काम थोड़ा ना
0: जी? घटिया काम
1: हां, घटी होना थोड़ा दुशहरे तक ही चलना होना
0: जी। अच्छा अच्छा
1: जी।
0: अज अहां जेड़ा

0: कार्यक्रम से गल बात करा दे से करा दे विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस न जी इधे ऊपर गल बात जेड़ा से खास दिन हां आज बना दे न जी।
1: हां जी हां जी
0: जी ता पहले हुंदा था कि हां ज्यादातर जेड़ा नेचुरल हवा है ना जी सही लेंदे थे पर उने दी गल करिए आज कने दौर दी गल करिए ता एसी बिना ता आहा सोच दे कि कुछ अधूरापन है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी तो तुहें क्या लगदा है कि
1: संजय मैंने ये लगदा है पिपले दे बूटे थल्ले बैठ जाएगा ना हवा ताजी ताजी लई जे बस
0: जी बड़ी प्यारी गल तो हां बोली कि जेड़ा कोई भी पेड़ है तिदी थल्ले बैठी आ कने ताजी ताजी हवा जेड़े से खा पर फर्क तुहें क्या नजर आंदा है एसी दी हवा च कने जेड़ा ताजी हवा ती च क्या तुहें अंतर लगदा
1: एसी दी हवा तो मेरे जी जेड़े बैठ गए ते ना ये पता हुण आ ता पेड़ा पौधे थल्ले बैठने
0: जी एसी दी हवा कई
1: बार एसी दी टाइम है ना आज आज आज ये दी डेटा जो मेरे 80% बंदे एसी तो पड़े तो होटल जाते तो बोलते भाई एसी है
0: जी
1: है या नहीं है साथ दे पहले बंदे दी फरमाई थी उन्हें भी एसी
0: जी
1: पैसे दी बोलते कोई चक्की नहीं बड़ा एसी हो आजे दवा
0: चाहिए ही चाहिए मतलब हाँ खुद जो इतना एक कर दे कि यहाँ जो अगर एसी ना होगा तो हाँ बिना एसी दे जेड़ा ऐसा नहीं रह सकते ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल
0: पर नेचर से भी कुछ कोई ना कोई जड़ा बदलाव वैसे दिखने जो मिलता है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी समय के हिसाब से मैडम जी सारी चीजें जरूरत है ये क्योंकि पेड़ पौधे लोगों लगाने नहीं जेड़े लगाए होने से कट दे जाना थे ना
0: जी जी जी।
1: हाँ जी जितने के पेड़ पौधे कटी के लिए इतने बड़े मकान बनिए
0: जी
1: परवरिश
0: नहीं करके अच्छे तरीके ने तो फिर कुते चलना ना जी।
1: हाँ जी
0: जी बड़ा टाइम लगना ना जी।
1: किन्ने अर्जना दे पेड़ थे पिपला दे पेड़ थे अंबा दे पेड़ थे पोलैंड बने तो क्या रहा कुछ नहीं रहा बिल्डिंग दिखा अखे बखे कहने रोड दिखा बस
0: जी मतलब से पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म है जी। थोड़ा दिया बुरा भी लगता है कि ठीक है जागरूक होना भी जरूरी है पर इतना भी नहीं कि खुद जो ही नुकसान आहां जो पहुंचे है ना जी।
1: जी जी
0: जी जी तरनजीत जी आज तुम्हारा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: एक गाना सुनना मैडम जी मिट्टी दा बनायो गणेश गोरा तेरा लाडला
0: जी मिट्टी दा बनायो गणेश
1: गोरा तेरा लाडला
0: जी जरूर एक गीत तो हम तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा
1: धन्यवाद जी धन्यवाद
0: जी तो हम तभी तो शो तो गल बात तो हम सारे भी इस कार्यक्रम से हम करने कर सकते करने तो हम सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जड़ा सफर तो हम तक रहता है 2 से 3 बजे तक सफर टाइम का भी बढ़ता चल रहा है कने गलबात का सफर भी हाँ तो हम तक पहुँचा देना कने फरमाइशां दा जिहड़ा सफर है उजो भी तुहां तक पहुँचा देन इसी कन्ने फिर त्यां थोड़ा दे अग्गे बढ़दे न कन्ने रणजीत जी तक ये भजन पहुँचांदे न तुहां सारे भी इंजॉय करा कन्ने सुनदे रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, तो सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि करने इसी करने तो सारे एंजॉय। पता है कि इस कार्यक्रम का जोड़ा सफ़र है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। सफ़र जोड़ा है से उन्होंने जो बोला था कि अनुमति जोड़ा है से तुह ले लिया तो जरूर अनुमति भी लैनी है, जाते जाते ये फरमाइश जोड़ा है से तुह तक पहुँचानी है, क्योंकि सफ़र जोड़ा है से इतों ही संपन्न होंगे पर जिहड़ा समय है समय का जिहड़ा सफ़र है से इतों ही हाँ रोकते हैं। कन्ने बाकी जिहड़ा गलबात है से जरूर तुह तक अहां पहुँचाई है, कन्ने तुह सारे भी जरूर जिहड़ा आज अहां खास दिन बना देन से तिथि पर थोड़ा जिहा सोच विचार जिहड़ा है से करना है कि पर्यावरण या प्रकृति जिहड़ा है से अहां वास्ते कितनी ज़्यादा जरूरी है। सोच विचार करके ताई अहां विश्व पर्यावरण जिहड़ा स्वास्थ्य दिवस है या पर्यावरण का जिहड़ा ख्याल है से जरूर रख सकते हैं।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू, पेट तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती।

0: ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
1: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
2: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
1: हाँ बोलो।
2: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
1: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
2: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
3: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून ट्यून तो है सभी ट्यून क्या शुक्र रहा तो हम सचिन कपूर हाजिर हो चुका कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। कैसे हैं तो है सब, उम्मीद भी आ होप भी आ और सोचो भी कर दें कि तो है सब खरे भूणे हैं। श्रोतों सोच इंसान रे बड़ा कुछ तय करे दिन दे हा, श्रोतों सोच इंसान जो किया सो हगू भी ले गन दिया, सोच इंसान जो किया सो पचू भी लेन दिया, सोच इंसान जो किया सो आसमान छूने पर भी किया सो तैयार करे दिन दे हा, सोच इंसान जो किया सो गिराए भी सकते हा। श्रोतों सो सोच पर बहुत कुछ किया सो निर्भर करता हा कि तुंदी सोच कस प्रकार रहा, तुंदी नीयत कस प्रकार रहा, तुंदी नीति माँ कोई खोटता नहीं हा। तो हूँ सचिन कपूर रहा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ हा 91.2 मेगाहर्ट्ज पर और बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। सभी पहले तो तू बताया है तुंदी सभी री फरमाइशा पूरी करने माँ किया सो अक्सर तैयार रहन देन और कोशिश कर देन गिनते सभी श्रोता री सब फरमाइश अगेन सो है जरूर पूरी के ना सो करे सकन है ना। आज मौसम के श्रोतों सो मतलब बदला ये ऑलमोस्ट रे हुआ हल्की फल्की माइनर दे बरखा करखा बोही बुने करखा ना बोही बुने और इस समय अगर आऊँ दसो श्रोतों तो 17 डिग्री सेल्सियस किया सो तापमान हाँ धर्मशाला रहा बन रहा श्रोतों और हाँ 17 डिग्री रे आसपास किया सो इस समय बन रहा तापमान यानी कि अब ठंड रहा आगाज़ किया सो ऑलमोस्ट भुचे छू रहा। ह्यूमिडिटी री गल करूँ जती अंग्रेजी में नमी बनते हैं श्रोतों ता 82% के आसो ह्यूमिडिटी बन रही है इस समय। ये मौसम री जानकारी है जो है तुसु होगी साझा करे हा बयां करे हा श्रोतों और अबे तो है सब श्रोतागण सोसु होगी जुड़ी सकदन अपना पसंदीदा गीत होनी सकदन अपने क्षेत्र री जानकारी किया सो साझा करे सकते हैं और है भी जरूर तुसु होगी कि सो कुछ एक खास जानकारी जो असु लगता है अपने श्रोता सो गया सो शेयर करनी हिन सो है जरूर श्रोतों शेयर कर ले तो सोगे साझा कर ले। तो लाइव कार्यक्रम तो अपना गादा कार्यक्रम के जनाब शुरू हो छू रहा 5 बजे तक रहा सो बिल्कुल तुसु सोगे भूणा हा अनेकों जानकारी पहुंचाने री कोशिश किया सो इस नाचीज री सचिन कपूर री जरूर लेने हैं और अपने जो अपनी जो फरमाइशा बोली सब फरमाइशा भी तुसु तक पहुंचाने रेन दी कोशिश किया सो भरपूर रहने हाँ। शो तो आइए था आगाज कर दिन कार्यक्रम

শুধু এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর বেড়ি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর রো রাউন্ড আছি যে সচিন কাপুর হাজির আ কার্যক্রম ইন্দি আপনি গা পালে করে বহুত বহুত স্বাগত হার্দিক অভিনন্দন আগমো কে ফিরি সবই হুনে আলে রা সবই শ্রোতাগণ রা হোপ সো তো সব বড়িয়া বুনে খরে বুনে হিন চলিয়ে যে কুছ এক খাস জানকারি হোগি কি সো আপনে শ্রোতা জো হ্যায় কি সো রূবরু করবন্দে হিন শ্রোতো ওর बिल्कुल एक खास जानकारी तुसु तक रहे जरूर लेकर आए ना धर्मशाला रहे नरवाना क्षेत्र में आकर शराबी है कि शतों सो नशे में धुत कार चालक द्वारा युवती जो कुचलने रहा प्रयास करो और सिरे पिता हो गे किया युवती ने पिता हो गे किया सो मारपीट भी करे शतों मारपीट रहा गंभीर मामला किया सो सामने आ ये नरवाना रहा मामला है शतों धर्मशाला पुलिस है कि सो आरोपी रे खिलाफ FIR दर्ज करी ली है शतों और पीड़ित बुजुर्ग जो कि आसो जोनल हॉस्पिटल तीन भेजी था तो शोतों CIAV टीम में कि आसो धर्मशाला क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते शोतों अमृतसर और कांगड़ा रह रहने वाले दुई आरोपी जो कि आसो 5.92 ग्राम चिट्टे सो के किया सो गिरफ्तार करो हा शोतों जिला मुख्यालय धर्मशाला में स्थानीय थाने थो लेकर गुरुद्वारा मार्ग और श्यामनगर री तरफ गाने वाले वस्ते में किया शोतों सो खड़े वाहन री वजह थों किया सो राहगीर राहगीर के सो हमेशा थों परेशान बुंदे नजर इच्छु कर देन जो कि आपे भी बुच्छू कर देन वाहन चालकों भी भारी परेशानी रा सामना किया सो करना पे उगड़ता हा ता बिल्कुल ए रोड के सो संगड़ा रोड हा और जितने भी श्रोता इस समय सो हूँ कर देन ता जरूर इस साइड की सो पार्किंग री जगह नहीं है तो है अपनी गड्डी जो कि सो पार्क मत करू करा जो कि श्रोतो ए काफ़ी कंजस्टेड रोड किया सो बड़े साल थो वहाँ भी और तो है सब अगर इस प्रकार हो गए किया सो अगर रोड बखे किया सो गड्डी खड़ेरी दिन दे हिंसोतों तगर का नगर का दिक्कत रहा सामना किया सो आम जन जो सहना पैंता हा फेस करनी पैंते हैं इस प्रकार री कुछ एक मुश्किल ता तो है सब श्रोता जरूर जुड़ सकते हैं इन चीज 7088879 अक पर नंबर अक मौके फिर यह है शेयर करीन दें तू होगी 7088879 अक पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं याद रखा श्रोता तो है कुछ शब्जों खरा होनू कर देन तो सो होनू कर देना रेडी गुंजन धर्मशाला और रेडी गुंजन माँ इंदी अपनी गप्पा तुंदा अपना गादा कार्यक्रम इस नाचीज आरजे सचिन कपूर सोगे कुछ एक खास जानकारी के अनुसार तू सोगे शेयर करते रहना हाँ श्रोता चलिए लेकर चलते हैं तू सब भी श्रोता हो जो जानकारी रा सिलसिला किया सो यही चलते रहना हाँ श्रोता और गीत संगीत रा सिलसिला भी किया सो यही चलते रहना हाँ तो बखूबी हसू होगी कि सो बन रहे हैं और कार्यक्रम बिल्कुल होनो करते हैं श्रोतों लेके चलते तू सु सभी श्रोता जो इस गीतारी किनारी बने रहा जुड़े रहा आर जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रही और गूंज इंदे प्यारे प्यारे श्रोता जितने भी बन रहे हैं जितने भी जुड़ रहे हैं त्यारे सब प्यारे उन्होंने तू सभी प्यारे दिया गीत तुंदे वीडियो सेट मां

0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर हेवेड़ी गुंजन और आऊँ सचिन कपूर बिल्कुल लाइव है समय इंद है श्रोतक इनके सोस हो गए कनेक्ट लगे हैं श्रोतों बूणा पुस्त दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दिन नमस्ते जी। हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक न?
1: ठीक ठाक जी। वधिया
0: जी। कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन? जेंगो गाइड जी। करे करे लुगरिन जेंगो गाइड जी तो है।
1: हाँ जी।
0: करे लुगरिन मेलो।
1: बस बेगुरिया कर लगना जब बगड़ूरू लग रहे राड वाड़ करना।
0: अच्छा।
1: हाँ जी।
0: और सब बढ़िया?
1: हाँ जी बढ़िया।
0: नोई ताजी?
1: पुरानी नहीं जी सब नोई ताजी तो कोई भी नहीं।
0: कोई नोई ताजी नहीं है?
1: ना जी।
0: अच्छा कुछ तब होने चाहिए नोई ताजी तीन ही है सब कुछ।
1: हाँ जी
0: मेरे कुछ तो नोई ताजी होने चाहिए यार।
1: नोई ताजी तो ले अबे अंबर चुक्कू हो बोले बोले गेट चेक हो।
0: अच्छा तो ट्रैक ट्रूक माना गया तो है करखा?
1: ट्रैक जी तो ये मौसम ना छट्टू करना लिखला से था।
0: अच्छा ट्रैक में करेगा ना फिर है ना।
1: हाँ जी।
0: चलिए ठीक है जी। कौन दिन गीत होना पसंद कर ले?
1: गीत होना नैनो नैनो हक्का कुणी लाए चुराई रीति मंजा।
0: नैनो नैनो हक्का कुणी लायो
1: मेरी ये नैनो।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: ठीक है जी। जरूर होने ले दूसु।
1: ठीक है जी। धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी। धन्यवाद। इस गीता जो है लिख लियो जरूर ब्रॉडकास्ट कर ले।
1: ठीक है जी। यूट्यूब में निकली ना।
0: ठीक है। नमस्ते जी।
1: ठीक है जी। नमस्ते।
0: श्रोतो चलिए अगले श्रोता जो कनेक्ट कर दे। नमस्ते जी। हेलो नमस्कार। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए श्रोतो बल देना कि एक गल मुझे याद आई थी अब जो कि मन खराब हुआ ना कभी भी तुंदा मन खराब हुआ मन माना मन जो चिड़चिड़ापन हुआ मन खराब हुआ तो अपने शब्द के ना सो खराब ना करना चाहते कजो कि मन रह गया मन आज खराब आ थोड़ी देर बाद ठीक बुझगाना या हफ्ते बाद ठीक बुझगाना दसा दिन बाद गया सो ठीक बुझगाना लेकिन जो तुंदे मुँह तो शब्द निकल रहे ना सो ठीक ना बुना इन शो सो गोली हैं के न सो चुभ गंदे न और सो ठीक ना बुंदे हैं सो कभी भी मन खराब हुआ तो अपनी वाणी में क्या सो विनम्रता जरूर रखन अपनी वाणी में क्या सो मिठास जरूर रखन शो तो बहरहाल इन अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: कौन बल्लू दिन और कड़ी था बल्लू दिन
2: वैनिका बोल रही मैं कंदी से।
0: अच्छा जी ठीक ठाक न बाजी बाजी
2: ठीक
0: करे लुगरिन
2: करे ना
0: बेकुरिन।
2: हाँ जी।
0: अच्छा कुंडी ने गीत होना तो सु
2: सजना और सजना
0: कुंडी ने जी
2: सजना और सजना
0: तेरे ताई सजना।
2: हाँ जी।
0: क्या बात है कस क्लास से मंच पढ़ दें तो है?
2: यूकेजी।
0: यूकेजी माँ कस स्कूल ले पढ़ दें?
2: गुरुकुल।
0: गुरुकुल माँ

चलिए कार्यक्रम जो हो बढ़ंदे हिन और नैनो नैनो हाका कुणी लाई हो ए गीत होना छंद हिन ता सुनील राणा जी री आवाज़ में गीत है शो तो जरूर हुनंदे हिन।

0: इसकी तरह आनंद जरूर ले लेशो तुम। लेकिन यह तो है सब उन्होंने समय एफएम बैंड कियानु दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला से हो गया और आऊँ सचिन कपूर है। चलिए जी फरमाइश और दौर के सो है बिल्कुल पूरा करो कर दिन और सोगी सोगी ये भी ध्यान रखो कर दिन कि इन दे श्रोतागण के ना सो जरूर रूबरू भी भून छो तो है ना। अगले इन दे श्रोता असोगे कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बलून दिन और कड़ी थो बलून दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते कौन बल दिन और कड़ी थो बलून दिन जी।
1: रवि बोल रहा जी बैरिया ते बिलासपुर दे।
0: अच्छा रवि जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बिलासपुर ते बोली रे।
1: हाँ जी हाँ जी बिलासपुर ते।
0: और ठीक है।
1: ठीक है भाई ठीक है तू सुनाओ।
0: अच्छा क्या करना लग रहे
1: भाई। छलिया का काम चल रहा।
0: अच्छा मैं थोड़ी थोड़ी बिलासपुरी भी बोली रे।
1: हाँ
0: थोड़ी थोड़ी इंदे मंजो। अच्छा
1: छलिया का काम चल रहा जोरा पर।
0: छली दे काम चल रहा।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा
1: ता बस लगी रे खोटने मतलब चल गपशप ही मार लिए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है तो अपना तुंदा अपना चैनल है और तुंदा अपना वेड़ी गुंजन है ता तो है बिल्कुल गपशप मारी सकते हैं अपना पसंदीदा गीत की ऐसा होने सकते हैं बिलासपुर तो।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जनाब कुंदे गीत सुनना होना तुसु
1: आजकल दो दो रा ट्रेंड चल रहा।
0: दो दो रा ट्रेंड चल रहा।
1: वो गाना सुना ना रहा बेटा दो दो रखिया।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: ठीक है जी ट्रेंड जो फॉलो करना भी जरूरी है ना।

0: ठीक है जी, ठीक
1: है। नारा वे तू दो दो रखी है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है जनाब, जरूर तुंदी फरमाइश में गी तो हुन ले है।
0: ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार।
1: ठीक है जी, धन्यवाद। शतों एक कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रहा और आऊँ सचिन कपूर इस समय कार्यक्रम जो होस्ट करू करता हा। चलिए चल दें और इंदे बहुत ही अच्छी क्यूट दे यूकेजी में दसो, आई थिंक यूकेजी एलकेजी में पढ़ते हिन और फरमाइश है त्यारी सजना हो सजना है ना, ज़रूर फरमाइश रहा दौरा था, फरमाइश रहा दौरा सो ज़रूर पूरा करना हाँ शोतों शोतों। लेकिन इतों पहले गया सो कुछ एक जानकारी अपने श्रोता तक के ना सो असो ज़रूर पहुँचानी हिन, कुछ एक खास जानकारी के ना सो ज़रूर पहुँचानी हिन श्रोतों। बहुत सारी जगह के श्रोतों को सो बरसाले री वजह काफ़ी ज़्यादा नुकसान बछू रहा ठेरी मतलब हले तक किया तो है मन नहीं सकते हले तक किया सो भरपाई किया सो चल रही है और बहुत सारी जगह के सो भरपाई ली पूरी भी किया सो ना हम भोई है श्रोतों। इसी सो के श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और मैं मौसम रे जानकारी की सो तुसु तक पहुँचाई देते थे कि 27 तरीका तक यानी कि दत्ता तक के सो मौसम खराब दसु करते हैं। दत्ता भी बोल सकता कि मौसम की सो खराब रे शतों और सोमवार थो त्राय दिन किया सो बैंकाले और मौजा। अच्छा यह गल्ला रह गया सो तो है सब जरूर यह गल्ला रह गया सो आंसर जरूर कर कि बैंक आले बल्लू कर दिन कि असू तैयारी स्टाई के इस जो लेकर आ कि सो बल्लू कर दिन कि असू 5 दिन नहीं कि असो काम करना हा 5 डेज वीक कि असो असू करे दिया ठेर तक रिया हड़ताल करे अशो तो और सोचा लख लख रुपया डेढ़ डेढ़ लख रुपया 80-80 हज़ार भी है तनखाही पाने वाले मनु कहना सो भी बल्लू कर दिन कि 5 दिहाड़े कि असो बैंक चो करे दिया असू 5 दिहाड़ा ही काम करना हा और जो एक संघर्ष व्यक्ति है संघर्षशील व्यक्ति है जो कि जिस योग छुट्टी लेना भी किया सो मतलब महाभारत था पूरा मंथ मन जो आग छुट्टी लेना भी आ किया दो ही छुट्टी लेना भी किया सो महाभारत था सो भी तो हिन जो स्ट्रगल करूँ कर दिन 10 हज़ार अंदर 15 हज़ार अंदर 20 हज़ार अंदर है ना सब फैसिलिटी भूने तो बाद बावजूद भी कुछ इस प्रकार होगी जो बैंक के कर्मचारी इनसो बल्लू कर दे हिन कि असू 5 डे वीक के असो करे दिया तो सोमवार तो त्राई दिन की असो बैंक बंद रहने हिन श्रोतों और जमी करे कि असो विरोध करना हा 30 सितंबर तो कि असो हड़ताल पर चले जाना हा इन सभी कर्मचारी। बैंक व्यवस्था तो जुड़ रहे मुद्दे जो लेकर श्रोतों 28 तो 30 सितंबर तक किया सो प्रस्तावित त्राई दिन दिवस से किया सो राष्ट्रव्यापी बैंक किया सो हड़ताल रहने हैं श्रोतों और हिमाचल प्रदेश इकाई थो किया श्रोतों सो हिमाचल प्रदेश के संयोजक नविंदर शर्मा सहित विभिन्न बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी संगठन रे प्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे श्रोतों और बैंकिंग क्षेत्र में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और नई हेरा ये बल्लू कर दें कि 5 दिवस मतलब 5 डेज वीक 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के असो लागू कर दिया श्रोतों। ये योजना वापस यारी मांग है और 28-30 सितंबर तक हड़ताल का आह्वान इंया करो हा। यूनियन के अनुसार 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था के तहत शनिवार और रविवार जो साप्ताहिक अवकाश किया सो भूना चाहिदा हा। ये बैंक आले बल्लू कर दिन किया सो शनिवार और रविवार किया सो हर शनिवार और रविवार तब बंदे आ छुट्टी लेकिन हर शनिवार भी किया सो छुट्टी करा जी साप्ताहिक अवकाश किया सो सो भूना चाहिदा हा। यही आ रही बैंक आले भी किया सो मांग है शोतों। अभी दी आम जनता कितनी परेशान बच्चों कर दे कितना त्यारा लेन देन हाँ कितनी जगह क्या किया। सो इं जो किया सो फर्क नहीं, और आम जनता था हमेशा तो पिसो ही कर दे अशो तो, और आगू भी आम जनता की असु बेचारी पिसना या को जो कि असु हो जाए कोई भी बो जाए नेते भून जाए शेते भून कम त्यारे बुंदन जनाब जियारी चल दे आ जियारी अच्छी सेटिंग आ जो बन देन कि हाँ असु हो गए इंदे बंदे हो गए कि ये चल रहे थी है इंदे बंदे भी किनारी है हिन इंदे बंदे सो गए चल रहे न जियारी अच्छी सेटिंग है कलयुगी दौर है जियारी अच्छी सेटिंग है त्यारे ही काम किया ना सो भुंदे हैं जहने वोट मंगना तहन था मंगना तहने सब अपने पुछगन दे और वोट थों बाद किया सो चाहे तीनों तो है दस फोन करी लिया तां भी सो फोन ना अटेंड करने थो भी किया सो परहेज कर दे हिन ये असलियत आ इस कलयुग री असलियत आ। लेकिन अक मूर्खता मुंजो ये लगदे आम जनता रे कि वोट पाना या है भी हमेशा बंदन कि वोट किया सो जरूर पा वोट पाना किया सो जरूर गच्छा। लेकिन क्या आम जनता सिर्फ और सिर्फ इति वास्ते आम जनता जो प्रोत्साहित करेगन दहा कि तो है वोट पा तो है वोट पाना जरूरी है। क्या आम जनता रे काम ना भूने चिंदे क्या आम इंसान रे काम किए सो ना भूने चिंदा। अगर ऐसा हा कि भूने चिंदेन तो फिर कौन है मंद है आज भी तो है एरे ले आ जाए तो है धर्मशाला रे गल ले लिया जाए तो है हिमाचल रिगस की और कॉन्स्टिट्यूएंसी रे गल ले लिया कितने ही आम मणु के ने सो निकल करी चली ने इनकी भाई इंदे फोना ना चुकंदे इंदे ये काम इतने सालों ना बुच्चू करदा इंदी ये सड़का इतने सालों ना बनू कर दी इंदा फलाना ही है ना बुच्चू करदा। फिर कहो जनता जो तस समय मोटिवेट कर दे हिन कि वोट पाई दे जी वोट पाना तुंदा अधिकार है। अगर वोट पाना जनता रा अधिकार हा ता फिर कम करना ते फोन चुकना के त्यारा अधिकार नहीं है। जहने तो है पावर में चलींदे ने जहने तो सत्ता में चलींदे ने तहने तो है आओ बाओ कुछ नहीं हेरदे अगू पिछू कुछ नहीं हेरदे तहने तो सिर्फ अपनी सत्ता रा गुमान करदे हिन और तस गुमान में के असो रहंदे हिन। बहरहाल है तो इतना ही बल्ले सकते हैं कि अगर आम जनता रा किया सो वोट पाना अधिकार हा तो आम जनता राय भी अधिकार हा कि सो काम भी किया सो आम जनता रा जरूर भुआ जरूर और आवश्यक भुआ। बहरहाल इन श्रोता गणा सुखे कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दे हिन। नमस्ते जी।
2: नमस्कार सचिन जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते, क्या हाल चाल ने जी? ठीक ठाक
2: जी तो है वाला
1: है भी ठीक ने जी। करे लगुरिन
2: अरे लगना ही है थोड़ा खेती बाड़ी रह रू दे।
1: अच्छा जी कौन बोलूं देन और कड़ी था बोलू कर देन
2: नील बोलू दम पालू मुरा हूं।
1: अच्छा सुनील जी बोलू कर देन पालमपुर था हूं, क्या बात है। सुनील जी पालमपुर थों एग्जैक्टली कड़ी थों बल्लू कर देना
2: कंडवाड़ी।
1: कंडवाड़ी, क्या बात है। कंडवाड़ी की सो इंदा बड़ा तड़ी गद्दी भाईचारा की सो बड़ा भरे है ना जी?
2: हां जी थोड़ा मिक्स भी है सब कम्युनिटी ना।
1: अच्छा मिक्स है सबको सब
2: कमिंदा ज्यादा।
1: अच्छा अच्छा कजो कि मुझे याद है कि कंडवाड़ी में है बड़े हल्के हल्के बंदे थे तो अग छूरे थे तो दस दे थे कि ये सब गद्दी के न सोरन दे हैं पर बड़ा अच्छा इलाका बड़ा प्यारा इलाका जड़ते कराऊँ नज़र दुड़ाओ करता था बड़ा हसीन इलाका कंडवाड़ी
2: जी बड़े तगड़े तगड़े इलाके हैं दिया कुछ फेमस हो चीज़ हैं कि जगह थे कई हैं निकलती हैं नजर नहीं
1: ना। अच्छा चलिए जी ता इस कार्यक्रम जो तो है पालमपुर थो हुणु कर दे हिन कितने साल बुझगिन जी हुण दे कहना तो हुणु कर देन
2: कब साल हो चुके हैं जी कम से कम 15-16 साल हो चुके ले।
1: अच्छा तो है रेडियो थो जुड़ रहे हैं
2: जी चतुंदा प्रोग्राम कुछ दे
1: हाँ इस कार्यक्रम जो हुण दे मेरा नहीं प्रोग्राम ये प्रोग्राम तुंदा है जी आऊं ता नॉर्मल दे आ होस्ट करो करता बसे तुंदा अपना कम्युनिटी का कार्यक्रम है। कितने साल बच गए इस कार्यक्रम जो हुण दे
2: बने मतलब इन दा तुंदा
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: दोनों रा इन दा सीधा
1: ही जी जी जी जी जी जनाब जी
2: 34 साल हो गए
1: 34 साल। अच्छा क्या खासियत लगती जी इस कार्यक्रम में
2: खासियत थी कुछ जानकारी मिल गई ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾਣੇ ਮਨ ਸੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਕੋਣ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਾ ਥੋੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ।
1: अच्छा चलिए जानकारी मुली गंदी मोटिवेशनल मुली गंदे अपने प्राय रखिए सो पता लगी गंदा
2: तुन्दी आवाज ही मिल गंदी सुनने हो
1: चलिए जी ये ता ये सौभाग्य इंदा जी
2: तुन्दे बड़े ना फैन सब
1: ना ना जी इंदा कोई फैन नहीं
2: ना ना वाई वो ये तो तुन्दी आवाज ना नहीं कितनी और में आरजी थी तैयारी में पर तुम दिखती हैं जी इनके सामने लाना ऊपर ही लगता है निके
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद जी सभी आरजे के इन सो बड़े इंदे सुरीले हिन और बहुत प्यारे हिन बहुत बड़ी प्यारी प्यारी आवाज सुन सभी जी जी जी जी, जी जनाब रुचि का साइड खड़ो रहते बल्लू दी कि इन बल्ला की मेरी आवाज किया सो प्यारे या तो क्या ली बली दे तो है कि रुचि करी आवाज किया सो बड़ी प्यारे या
2: चलिए
1: जी सौभाग्य धन्यवाद सरस्वती माता रा आशीर्वाद है तुंदा कम्युनिटी रा आशीर्वाद है
2: ना थोड़ा मजाक भी चल रहा ना नहीं के
1: अच्छा एक्चुअली हम पहले थिएटर कर रहा था बच्चों सो आदत था
2: ना ना बढ़िया लगता है नहीं कि प्रोग्राम जोड़ा तीन फिक्स करूंगा ना तीन रा बड़ा तगड़ा
1: अच्छा चलिए
2: गाना हटा दिया तो है
1: जी
2: तेरा मेरा लगन
1: हनाना तेरा मेरा लगन जरूर जी इस गीत जो है ब्रॉडकास्ट कर रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है तुंदा जी अपना प्यार देने वास्ते और असु इतना मोटिवेट करने वास्ते
2: धन्यवाद उस मालकारा बाकी इनके धन्यवाद असु तुंदा करना चाहता वीरा टीम वाला
1: जी
2: करे
1: थैंक यू सो मच जी बहुत अच्छी टीम है इनदी बहुत मेहनत कर दे टीम इनदी थैंक यू सो मच जी इन मोटिवेशनल गल्ला तुंदी अस और बूस्ट अप करती हिन कम करने वास्ते और तुंदा प्यार आशीर्वाद सदैव ही रहे थैंक यू सो मच जी तुंदा पसंदीदा गीत है तुसु जरूर होने ले
2: मोस्ट वेलकम जी
1: थैंक यू जी शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रे इंदे श्रोता थी पालमपुर थों कंडबाड़ी थों पालमपुर री कंडबाड़ी थों जो असो की जुड़े श्रोतो और यारी फरमाइश है जरूर हा के असो सांझा कर ले चलिए बने रे जुड़ी रे रेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने बन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे आइए जी कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगू बढ़ा हिन और फरमाइश दौर किया सो पूरा कर दे हिन।

0: वाह जेरी जी, तुस होगी ना इवन की पूरी कम्युनिटी होगी कि सो इंदे भोलेनाथ जी के न सो सदैव रहन, और ये आशा ये इस प्रकार हो गया है मन्नत के असो मंगी सकते हैं, और इस प्रकार हो गया है कि असो तो सो समझ सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी होगी कि हर सभी कम्युनिटी होगी इवन की भोलेनाथ जी ज़रूर असुसो की भून। हाँ तो हमेशा बोलो ऐसा होता हूँ कि भगवान हूँ ये भी बल्लू करता तो कि भगवान की असो मतलब चलो थोड़ा मतलब दुख बीमारी की असो पार्ट ऑफ लाइफ है मुड़ेगा अच्छा कोई गल ना, पर इतना दुख दिया भगवान की जितना इंसान की असो जर ही सका जितने माँ इंसान की असो सर्वाइव कर ही सका है ना, उतना दुख मत दिन दे किसी भी भगवान जी की अह सर्वाइव भी क्या ना सुना कर ही सकने और अह असमर्थ क्या ना सो बचेगा है ना। तो बाकी तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, चलते रहना श्रोतों। और हम सचिन कपूर कार्यक्रम जो होस्ट करू करता है इन द अगले श्रोता सुगी कनेक्टेड हैं पुजदन कौन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी सचिन जी, ओंकार बरसान बलुंदा हूँ नोर बिलिंगा दो।
0: ओंकार बरसान जी नोर बिलिंगा बलुंदन, ठीक ठाक ने जी?
1: बस बढ़िया जी, ठीक ठाक के दा।
0: और करे लग रेन
1: कर लगना है बात थोड़ा ही ना लाड़ा सो बड़ो है तीन बात बात कर रहा है चाजू पिया।
0: हां जी
1: हां रेडियो में थोड़ा गाना गुना सुन दे तो हां गप्पा मार लें दे थोड़े से। अबे तू पीछे दस हो के सो इंया बैंक वाले यार ताला त्राय देना जी। हां
0: हां जी हां जी,
1: अब बेचारे मुश्किल है बड़ा है ने क्योंकि गाइयां दस भाई ना छुट्टी कर लेने लंच करना जी पौने दो तो पौने त्राए तक जी
0: कसकी कसकी रही बंदा कसकी डर थो दो कसकी दो थो डाए
1: बेचारे मुश्किल बड़े बारे ने जी बड़ी तकलीफ है इं पैर इं डेढ़ दो दो लाख रुपया मरवाड़ता जी घट मरवाड़ता इं मजदूर नहीं बेचता
0: मतलब ठीक है समझ दन की चलो मतलब ठीक है तो है पेपर क्लियर करो तो है स्टडी में ध्यान दिता सब गल ओके न सो सब गल है समझू कर दे न, लेकिन फाइव डेज वीक मतलब ठीक है ये भी मुझे पता कि बार कि आसो सब जगह ऐसा भुंदा है ना, अगर फाइव डेज ही वीक करना तो फिर हर जगह कर ही दिया ना, फिर सिर्फ और सिर्फ बैंक यूनियन अगर हड़ताल करू कर दे तो सिर्फ बैंक यूनियन जो कोई फाइव डेज वीक फिर तो हर जगह कर दिया, फिर तो हर जगह ना हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए फाइव डेज, फिर तो हर स्कूल होना चाहिए फाइव डेज, फिर तो जड़ जड़ी इंसान जो लगुरा हा जिन्या जगह में प्राइवेट जॉब में फिर सब जगह ही करी दिया फाइव डेज वीक, फिर कहो मतलब अक्की जगह कहो कि सो यूनियन है और सो बार बैंक बार बड़ी जगह ऐसा कि फाइव डेज वीक है बहुत कंपनी मान जाए ऐसा कि फाइव डेज वीक है, लेकिन फिर हर जगह बुझेगा अच्छा तो हर किसी को संतुष्ट है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मुद्दा ये नहीं है मुझे मेरे बेचारे बैंक वाले बड़े अच्छे अच्छे दोस्त तीन तीन वाला सचिन के पूरे टॉपिक को छेड़ो और कहो इन बाट लो रे लुआना, पर मेरा मेरा मुद्दा ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई आंदोलन करी करी कि सो सरकार मनी गच्छू कर दिन फिर तो हर किसी आंदोलन करना चाहता है ना।
1: इसी वास्ते पता क्या जी, इसी वास्ते ये है कि जन नौकरी मोलना जेड़े नौकरी हासिल करना जेड़े सभी का मतलब फर्ज है जी, आज सभी मोलना चाहिए जी है ना
0: जी जी,
1: पर इना वक्त नौकरी मोलेगा चाहे फिर सो मतलब कि भी सो डंडा लेकर तैयार हो जाएगा जी है ना, इसी वास्ते एक होना चाहिए कि सरकार जो एग्रीमेंट साइन करना चाहिए या जेड़े बैंक के जेड़े वो मतलब जी हाँ थोड़ी तीन जो आपको एग्रीमेंट साइन करना चाहिए हर कस क्यों जी है ना हर नौकरी वाला जो
0: आपको
1: एग्रीमेंट साइन करना चाहिए कि हाँ कि जदि मैं तीन कंडीशन दसना चाहिए जी हाँ करी करना अगर इन जो फाइव डेज वीक लौटते फाइव डेज वीक होना चाहिए एक कुंड जी ने बॉर्डर पर कोई जो बंदूका लेकर खड़ू रहे बर्फ पा रहा भाई केले केले जी खड़ू रहे बॉर्डर पर कोई पता नहीं है कि कहना गोले जड़े तो चलेने लगे होने जी है ना
0: जी जी
1: आराम तो कितने पूरे गड्डी में दफ्तर होगा छोड़ देना गड्डी में गाना गड्डी में इना टाइम मारे इना टाइम मारा वो करना
0: जी
1: फैमिली सो के रहना जी हाँ बच्चा बढ़िया बढ़िया स्कूल पर पढ़ाना जी हाँ है ना
0: जी जी जी
1: बढ़िया बढ़िया बच्चे को क्वालिफिकेशन देने सब कुछ बेचारे फौजी जाते हैं जेड़े बॉर्डर पर रहे करते थे प्यारे बच्चे की है मतलब घर है वो करू करते थे
0: 24 घंटे ड्यूटी होते हैं 24 घंटे
1: जो करू करते जी है ना तैंडी तनखाई जाते तैंडी तनखाई कितनी घाटे जी हाँ इंया पुलिस ने तीर मार दू होता इंया की हाँ की भैया करे करे हाँ तो सोचते हैं वो आता कल तक आप पाए जी है ना इधर बुना ही चाहिए कि भाई जी तूने दिन काम करना तूने दिन अरे पहले तू है ना तू दो ही दिन करा बेसा काम जी
0: बिल्कुल
1: हाँ तो आज तो संत तेरा सो जरा नो वर्क नो पे वाला जो हुआ सो आज आज इंदा की हां की ताने दिन अगर जे लागू करू हम तो लागू भी जुरम दा जी ना
0: बड़ा अच्छा था भाई गुड
1: हां तो इया जो थोड़ा ही ना मतलब इया कप्पा बलना जरा तो बलना पहले सोचना होइया जी ना
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही
1: ठीक है आज जी रहना है तू से
0: जी जनाब
1: आ तेरा प्रो गंदा रंदा इया दाल दूर घूमदा रंदा तेरा ट्रैक ट्रुक हो गंदा रंदा ना
0: जी जी जी
1: हां इस बढ़िया से होल गाइता किनर क्लास ट्रैक लगाई दूरा
0: जी
1: पिछले बारी श्री खान महादेव लगोरो इस बारी किन्नर क्लास लगाई था
0: जी
1: नागडाल गिचा है ना येरा मनी मेस गिचा है कुप्ती गिची है जी हां
0: जी
1: ता लगाई दिया गाना तो सके ना ना हो रे वचंगड़ू मत जोर जोर मेरी जोर
0: मेरी ये जोड़ी है
1: हां आ भी जात कर दे कि चलो दो चार साल जन तक जंगा में जोर आता ना घूम लेंदे तो प्रो खाना था थोड़ा ही ना ये आया हूं कि भाई जिंदगी का थोड़ा ही ना पता लगता कि मतलब
0: हसीन बात मिलता बिल्कुल
1: हाँ चलो ठीक है टाइम घाटा तू है वो करा जी ना ठीक
0: जी जनाब थैंक यू सो मच और जरूर तुम दे फरमाइश पूरी कर ले
1: ठीक है
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला दो है ट्यून कर रो और चलिए अगले

तो शोतो अवे वक्त उच्च गो तुसु सभी तो अलविदा लेने रा वक्त क्या करिए वक्त आसो के बदली ना पेंदा वक्त आसो के की आसो आचलना पेंदा और वक्त कदी भी किया सो बदली गंदा सो आज शो तुम दा वक्त हमेशा सो ना रहें दा शो तुम बदली ना जरूर आ माँ बाप री सेवा जरूर करा हर किसी योगे के आशो तुम जो तुसु लगता जैसे री मदद करना चाहिए जैसे री मदद जरूर करा और बिल्कुल अब सोगे जरूर खरे रहा इन शब्द था सचिन कपूर लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं उसे टीबी है।
5: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। नाउ से यू आर अ जीनियस।
5: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
7: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
7: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

रंजन धर्मशाला सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आपका अपना वेडी गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल, नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी, आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना से यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर विड़िगुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि इस समय तो यही कहा जा सकता है श्रोतों की मौसम का जो है वो आनंद ले रहे होंगे। इस समय जो धर्मशाला का मौसम है श्रोतों, वो कहीं ना कहीं बारिश वाला ज़रूर बना हुआ है और बिल्कुल बिल्कुल ये मौसम बारिश वाला है। इस समय सिद्धबाड़ी में जो है, मैं बताना चाहता हूँ, हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू भी हो चुकी है श्रोतों। एग्जैक्टली हम अभी सिद्धबाड़ी का ही बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो है वो मॉनसून विदा नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई भी ऑफिशियल अभी तक मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइन नहीं आई है कि मॉनसून जो है वो चला गया है। बिल्कुल हिमाचल में अभी तक मॉनसून जो है वो कुछ ठहरा हुआ है और रुका हुआ है श्रोतों। तो आप सभी सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं। तो आइए जी, इस समय धर्मशाला का मौसम जो है वो लगभग श्रोतों 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो बना हुआ है। नमी की बात की जाए तो नमी जो है श्रोतों वो 86% के आसपास बनी हुई है। यह इस समय धर्मशाला का एक्जैक्टली मौसम हमने अब तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की है। तो ये जानकारियों का सिलसिला श्रोतों यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो बिल्कुल यूं ही खुलेगा श्रोतों और यूं ही चलता भी रहेगा, क्योंकि आप सभी इस समय सुन रहे हैं और बने हुए हैं विड़िगुंजन धर्मशाला के साथ। बहुत से हमारे पास गीत संगीत हैं श्रोतों आप तक पहुंचाने में। आप सभी को उन सभी प्यारे प्यारे गीतों से जो है वो रूबरू करवाएंगे श्रोतों। लेकिन आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम का श्रोतों। आप सभी सोच रहे होंगे आगाज में पहला गीत कौन सा होगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे श्रोतों, और आगाज का ये पहला गीत जो है वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि आप सभी बन रहे हैं, सुने बने हुए हैं, सुन रहे हैं।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली जानकारी के साथ आप सभी श्रोताओं को जो है वो रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश सरकार के नशा विरोधी अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस की CIA टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पठानकोट कांगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गज पुल वजोल के पास एक निजी बस से जो है वो 15.85 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। श्रोतों, पुलिस ने इस मामले में बस में सवार दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 25 वर्षीय नूर मोहम्मद उर्फ बांसुरी निवासी गांव कन्होली मनहोर डाकघर व तहसील पुछरी जिला सारण बिहार तथा 25 वर्षीय मोहन बहादुर उर्फ मोनू निवासी वार्ड नंबर 4 गुप्त गंगा डाकघर तहसील व जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। श्रोतों, पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जो है वो पुलिस थाना गग्गल में NDPS अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। तो इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा श्रोताओं, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। आइए जी बिल्कुल आप सभी इस बात की होड़ में होंगे कि आगाज़ कब होगा। तो बिल्कुल होगा आगाज़ तो हो ही चुका है कार्यक्रम का, ये जानकारी का आगाज़ हो गया श्रोताओं। तो लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आप सभी श्रोताओं को लेकर चलते हैं इस प्यारे से नहीं नहीं गीत की ओर, नहीं भाई जानकारी की ओर, क्योंकि गीत तो अभी सुनाया हमने आपको। चलिए इस प्रकार के हम थोड़े बहुत जो हंसी मजाक के पल हैं वो आपसे साझा करते रहेंगे। श्रोतम, ज़िला कांगड़ा पुलिस ने जो है वो यातायात नियमों के पालन को लेकर अभियान चलाया है। श्रोतम, बिना नंबर प्लेट चलाए जा रहे कुल 132 वाहनों के चालान किए गए हैं, जबकि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 52 वाहनों के चालान किए गए हैं। श्रोतों, इस तरह यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल 185 वाहनों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की गई है। श्रोतों, तो आइए दशहरा उत्सव जो है वो आप सभी जानते हैं बड़े ही धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ जो है वो मनाया जाता है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, उपमंडल जयसिंहपुर के ऐतिहासिक चुगान मैदान में जो है वो 18 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राज्य स्तरीय दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियाँ तेज हो गई हैं। मेले के भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से SDM जयसिंहपुर एवं मेला कमेटी अध्यक्ष संजीव ठाकुर की अध्यक्षता में मेला ग्राउंड में दुकानें, झूले और डोम लगाने के लिए जो है वो खुली बोली करवाई गई। प्रशासन की ओर से मेला ग्राउंड के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य 18 लाख निर्धारित किया गया था। श्रोतों, इस नीलामी में कुल 5 बोलीदाताओं से भाग लिया बोलीदाताओं ने जो है वो भाग लिया। श्रोतों, जिनमें से ज़रूरी औपचारिकताओं और बैंक ड्राफ्ट की शर्तों के आधार पर 2 प्रतिभागी आरोग्य पाए गए। श्रोतों, इसके बाद 3 पात्र बोलीदाताओं के बीच जो है वो मुकाबला छुआ, जिसमें जयसिंहपुर निवासी प्यारे लाल नाग ने 22 लाख रुपए की सर्वाधिक बोली लगाकर पूरे ग्राउंड का आवंटन अपने नाम कर लिया। श्रोतों, SDM एवं मेला कमेटी अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने बताया कि मेला ग्राउंड के साथ डोम और झूले लगाने की जगह की बोली भी जो है वो संयुक्त रूप से करवाई गई थी। श्रोतों, इसी के साथ जानकारियों का सिलसिला जो है श्रोताओं वो यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। ये लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब इस प्यारे से गीत की ओर।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं रेडियो गुंजन में। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ अपने श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। जानकारी नहीं है ये, महज आपकी सेहत से जुड़ी थोड़े से टिप्स हम देने की जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कोशिश ही जो है श्रोताओं वो कर सकते हैं। तो विशेषज्ञों का जो विशेषज्ञ हैं श्रोताओं, उनका कहना है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बार बार होने वाले इन्फेक्शन और मौसम के साथ होने वाली बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा ये दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाने में, मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को रोकने में, दिल की बीमारी का खतरा कम करने में भी जो है वो अहम भूमिका निभाता है श्रोतों। फिर भी आज बहुत से लोग विटामिन डी की कमी से जो है वो जूझ रहे हैं, जिसकी वजह है घर या ऑफिस में ज़्यादा समय बिताना, धूप ना मिलना और खानपान की खराब आदतें। इस संदर्भ में विशेषज्ञ लगातार दिल की सेहत पर विटामिन डी के असर पर रिसर्च जो है वो कर रहे हैं श्रोतों। आइए पूरी जानकारी जो है वो आप तक हम पहुंचाते हैं श्रोतों। देखिए 40 की उम्र के बाद जो है वो महिलाओं का शरीर जो है वो कई तरह के बदलाव से गुजरता है श्रोतों। इस दौरान जो है वो कहीं ना कहीं हार्मोन बदलाव भी जो है उनका असर भी दिखता है, मसल्स का भी, हड्डियों का और शरीर में भी जो है वो बदलाव आता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं श्रोतों। तो कुछ महिलाओं को कमर में अकड़न, है ना, इस तरह की समस्या

समस्याएं हो जाती है, कमज़ोरी फील करना और ऐसी कई परेशानियां जो हैं वो महसूस महिलाएं करती हैं। इसलिए बढ़ती उम्र के साथ इन बदलावों को समझना और शरीर की देखभाल करना जो है वो ज़रूरी है। देखिए बहुत ज़रूरी है बढ़ती उम्र के साथ देखभाल करना। तो बहरहाल ये केवल महिलाएं नहीं, जितने पुरुष हैं वो भी जो है वो बढ़ती उम्र के साथ फिट रहें, एक्सरसाइज करें और देखभाल करें। हम विटामिन डी की कमी के बारे में बात कर रहे हैं जो दिल के खतरे के लिए ख़तरनाक है। जी बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं भली भांति कि विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करता है श्रोतों। हालांकि शरीर में इसकी भूमिका सिर्फ हड्डियों की सेहत तक ही सीमित नहीं है। विशेषज्ञ का कहना है कि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बार बार होने वाले इन्फेक्शन और मौसम के साथ होने वाली बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा ये दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाने, मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को रोकने और दिल की बीमारी का खतरा कम करने में भी जो है वो अहम भूमिका निभाता है। फिर भी आज बहुत से लोग जो हैं वो विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह है घर या ऑफिस में ज़्यादा समय बिताना, धूप ना मिलना और खान पान की खराब आदतें। इस संदर्भ में विशेषज्ञ लगातार दिल की सेहत पर विटामिन डी के असर पर रिसर्च कर रहे हैं श्रोता। उनका कहना है कि शरीर में विटामिन डी की कमी से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अच्छी सेहत के लिए विटामिन डी का सही लेवल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे, क्या विटामिन डी की कमी हृदय को प्रभावित करती है, ये बिल्कुल बताएंगे श्रोताओं। अब तक ये जानकारियाँ ज़रूर पहुँचाएंगे। आप सभी इस समय बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ वेडी गुंजन धर्मशाला में, लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। ये गीत संगीत का सफ़र हमारे साथ यूँ ही चलता रहेगा 8 बजे तक।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर। तो एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ श्रोताओं। जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूँ ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूँ ही खुलता रहेगा। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की ओर। श्रोताओं, कांगड़ा और मैकलोडगंज बस अड्डे को वापस लेने के लिए 27 करोड़ देने का मामला सरकार से उठाया जाएगा। श्रोताओं, ये बस अड्डे इन्हें बनाने वाली पार्टी के पास हैं। तारा देवी यूनिट को ठियोग बस अड्डे में शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। श्रोताओं, अब रीजनल मैनेजर का ऑफिस भी ठियोग बस अड्डे में ही होगा। श्रोताओं, बैठक में ऊना और ठियोग बस अड्डे में सिटी सेंटर बनाने के लिए पीपीपी मोड पर प्रक्रिया जो है वो शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एचआरटीसी उपाध्यक्ष अजय वर्मा, निर्देशक मंडल के सदस्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद, एचआरटीसी के प्रबंधन निर्देशक शिवम प्रताप सिंह सहित निगम और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। श्रोतों, उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एचआरटीसी का कोई भी बस रूट जो है वो प्रबंध निर्देशक की मंजूरी के बिना बंद नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपने स्तर पर बस रूट बंद करने का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। श्रोतों, एचआरटीसी प्रबंधन को 100 करोड़ कर्ज उठाने की अनुमति भी दी गई है। इससे निगम अपने कर्मचारियों और अन्य देनदारी को चुकाने का रास्ता निकालेगा। साथ ही राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि एचआरटीसी की ग्रांट को 58 करोड़ प्रति माह से बढ़ाकर 71 करोड़ किया जाए। तो इस प्रकार से कुछ एक खास जानकारियां जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यूं ही पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। श्रोतों, प्रयासरत हैं हम 8 बजे तक आपके लिए, तो बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ यूं ही।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम बिल्कुल वेड़ी गुंजन पर आप सुन रहे हैं और ये नाचीज आरजे सचिन कपूर इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है। श्रोतो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC द्वारा मरीजों और उनके तमीदारों यानी कि अटेंडेंट की सुविधा के लिए जो है वो विभिन्न क्षेत्रों से एम्स बिलासपुर तक सीधी बस सेवाएं शुरू की गई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कहा श्रोताओं की प्रदेश सरकार लोगों को सुगम और बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को सीधे एम्स बिलासपुर से जोड़ने के लिए 10 इलेक्ट्रिक बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे रोजाना 1000 से अधिक मरीज और उनके परिचारक जो हैं उनको सुविधा मिलेगी। श्रोताओं उन्होंने कहा कि वर्तमान में चिंतपूर्णी ऊना हरोली सोलन मंडी और जहू से एम्स बिलासपुर के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा बिलासपुर ज़िला के करलोटी बंदला शाहतलाई घुमारवी और बिलासपुर से भी एम्स के लिए सीधी बस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। घुमारवी से एम्स के लिए 4 तथा बिलासपुर से 8 बार प्रतिदिन बसों का संचालन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नालागढ़ से वाम शहर होते हुए तथा बद्दी से बघेरी होते हुए एम्स बिलासपुर के लिए 2 नई इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त नाचन विधानसभा क्षेत्र से भी नई बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों को भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर तक समय पर बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने में यह पहल उपयोगी

साबित हो रही है। इससे मवीजों और उनके परिचारकों को बसें बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वह निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को भी एम्स बिलासपुर से सीधी बस सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इन बस सेवाओं का लाभ उठा चुके मवीजों और उनके तीमारदारों का कहना है कि लो फ्लोरिंग इलेक्ट्रिक बसें मरीजों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक हैं। नियमित उपचार, जांच और फॉलोअप के लिए बस से एम्स आने वाले लोगों के समय की बचत हो रही है तथा टैक्सी और निजी वाहनों पर होने वाले अतिरिक्त खर्चे भी कम हो रहे हैं। श्रोतों, जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, पिटारा यूँ ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय इस नाचीज के साथ, आरजे सचिन कपूर के साथ।

0: शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो चला हुआ है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं, जानकारियों का पिटारा भी यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी समय बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। तो आइए अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी ज़िला के बलह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौंक में जो है आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्जे के दलदल में धकेला और प्रदेश की संपदा का दुरुपयोग जो है वो किया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को GST कंपनसेशन और RDG के रूप में करीब 60,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, लेकिन इस धन का उचित उपयोग नहीं किया गया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि करीब 45 महीने पहले प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में आमजन की सरकार बनी और एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं और उनके दर्द को समझते हुए मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की करीब 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता बंद कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक चुनौती दोनों का मजबूती से सामना किया। आपदा के दौरान राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से करीब 23,000 क्षतिग्रस्त घरों को दोबारा बनाया। राजनीतिक चुनौतियों का भी प्रदेश की जनता के सहयोग और देवी देवताओं के आशीर्वाद से डटकर सामना किया गया और कांग्रेस विधायकों की संख्या फिर 40 तक पहुंची। कांग्रेस सरकार का दृढ़ संकल्प हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर लोगों को उनके अधिकार दिलवाने की दिशा में काम कर रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके वित्तीय लाभ देने के साथ साथ अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए भी योजनाएं लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने किशाऊबाद योजना के उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों की मजबूती से पैरवी की है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार होती तो उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल के लोगों पर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता था। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के हित की पैरवी से प्रदेश के करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च बचाया गया है और परियोजनाओं से भविष्य में हिमाचल प्रदेश को सालाना 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। अब सभी बने हुए इस समय इस नाचीज सचिन कपूर के साथ और श्रोतों पूरे 7 बज चुके हैं। अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन में समाचारों का।
1: के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विश्वनाथ, सांसद एनके प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसीनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तम्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और विलावन संथल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शुद्ध FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेडियो जो कि सचिन कपूर। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अंतराल के बाद। जानकारियां जो है वो यूं ही चलती रहेंगी, श्रोतों जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा और ये सिलसिला बंद नहीं होगा श्रोतों। तो इसी बीच में आप सभी श्रोताओं को लेके चलते हैं हम इस प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि गीत संगीत तो यूं ही चलते रहेंगे श्रोताओं, और पिटारा भी यूं ही खुलता रहेगा जानकारियों का।

बाकी मनुष्य तो अपने होते हैं और अपने वो होते हैं जो आपका साथ देते हैं, आपका साथ निभाते हैं, आपके साथ रहते हैं श्रोतों हर बुरे वक्त में, क्योंकि अच्छे वक्त में तो हज़ारों होते हैं लेकिन बुरे वक्त में जो है वो केवल अपने होते हैं। वो अपने अपने नहीं होते, वो अपने हो सकता है पराए भी हो सकते हैं श्रोतों, लेकिन जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है, जो हॉस्पिटल में दिन रात आपके साथ खड़ा है श्रोतों, वो आपका अपना है। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विटामिन डी की कमी दिल के लिए खतरनाक है, इस टॉपिक पर भी जो है वो हम चर्चा कर रहे थे श्रोताओं। तो अपनी इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या विटामिन डी की कमी हृदय को प्रभावित करती है? जी बिल्कुल श्रोताओं, जानकारों का कहना है कि शरीर में विटामिन डी की कमी से दिल से जुड़ी कुछ समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। उनका कहना है कि दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होने के अलावा विटामिन डी शरीर के कई अन्य ज़रूरी कामों में भी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि सिर्फ विटामिन डी की कमी से ही दिल की बीमारी होती है। दिल की सेहत कई अन्य कारकों पर भी जो है वो निर्भर करती है श्रोताओं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, धूम्रपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और अस्त व्यस्त जीवन शैली शामिल है श्रोतों। विटामिन डी की कमी के सामान्य लक्षण हैं लगातार थकान, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी, हड्डी और पीठ में दर्द, बार बार इन्फेक्शन चलने में कठिनाई, बार बार इन्फेक्शन होना है ना, चलने में जो है वो कठिनाई होना श्रोतों, हड्डियों में जो है वो अकड़न रहना, दर्द रहना। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल बरतनी चाहिए श्रोतों। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में विटामिन डी का स्तर सही बनाए रखने के लिए जीवन शैली और उचित पोषण दोनों ही ज़रूरी हैं। सूर्य का प्रकाश हेल्थ विशेषज्ञ प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच कम से कम 15 से 30 मिनट तक सूर्य के प्रकाश में रहने की सलाह देते हैं। एक बार फिर से मैं समय बताना चाहूँगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच कम से कम 15 से 30 मिनट तक सूर्य के प्रकाश में रहने की सलाह देते हैं। खान पान की आदतें, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपने आहार में मछली, अंडा, विटामिन डी से भरपूर अनाज और दूध को शामिल करें, क्योंकि ये विटामिन डी से भरपूर होते हैं और मछलियां भी जो हैं वो विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत हैं श्रोतों। तो इसी प्रकार से जानकारियां जो हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि आप सभी इस समय बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। ये गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम है और लेके चलेंगे आप सभी को। अब वक्त हो गया है इस प्यारे से गीत का।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने वीडियो सेट पर। चलिए तो चलते हैं श्रोतों और कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे जो है वो बढ़ाते हैं। देखिए श्रोतों, विशेषज्ञ का कहना है कि शरीर में विटामिन डी का स्तर सही बनाए रखने के लिए जो है वो जीवन शैली और उचित पोषण दोनों ही ज़रूरी हैं, है ना। जैसे कि हम बताएं तो खान पान की आदतें भी जो है वो बहुत मायने रखती हैं। श्रोतों, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपने आहार में मछली अंडा जो मैंने कहा वो आप ज़रूर अपने आहार में जो है अगर आप खाते हैं तो श्रोतों ज़रूर खाएं। संतुलित आहार अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए जो है वो सभी ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। श्रोतों, एक्सपर्ट्स की सलाह है कि विटामिन डी डॉक्टर की सलाह है कि विटामिन डी जो है वो प्रॉपर उसको प्रॉपर लेनी चाहिए। प्रॉपर कैसे बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इनके ज़्यादा सेवन से शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो सकता है। विशेषज्ञ का कहना है कि विटामिन डी शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो है वो आवश्यक है, जिनमें न केवल हड्डियों का स्वास्थ्य बल्कि हृदय का स्वास्थ्य भी शामिल है। हालांकि शोध से पता चलता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी और हृदय रोग के बीच संबंध है, लेकिन ये सुझाव दिया जाता है कि यह कमी हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से केवल एक है। विशेषज्ञ का सुझाव है कि नियमित रूप से धूप में बहना, पौष्टिक आहार लेना और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने शरीर में विटामिन डी के स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा मिलता है। किसी भी सुझाव को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जो है वो सलाह ज़रूर ले श्रोतों। तो कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ आप सुन रहे हैं, कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है। इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा
5: है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना से यूर अ जीनियस।
1: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
7: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
6: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
8: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
6: हाँ बोलो।
8: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
6: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
8: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
1: गजब बेइज्जती है।

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और आइए श्रोतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस छोटे से अंतराल के बाद आपको लेके चलते हैं इस फेर से गीत की ओर।

0: शोधो एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। आइए जी, अब 7:46 हो चुके हैं और वक्त हो चुका है वेडी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का। बने रहेगा, जुड़े रहेगा वेडी गुंजन की इसी गूंज के साथ।
1: चौक में जनसभा में मुख्यमंत्री ने अपना परिवार सुखी परिवार योजना की पात्रता में मनरेगा में एक दिन कार्य करने की शर्त को हटाने की घोषणा की। उन्होंने योजना के तहत आय सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान भी किया। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेरचौक में जल शक्ति विभाग व विद्युत बोर्ड का डिवीजन और DSP कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही पुलिस कांस्टेबलों के 800 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इलाके में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए देने का ऐलान भी किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों व ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं देश की सौर ऊर्जा क्षमता के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में देश की सौर ऊर्जा क्षमता मात्र 2 GW थी, जो अब बढ़कर 160 GW हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 50 लाख से अधिक घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 10,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं।
2: 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 GW थी, आज यह 160 GW से ज्यादा हो चुकी है। हमने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है।
1: प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से एम्स बिलासपुर तक राज्य पथ परिवहन निगम की सीधी बस सेवा शुरू की गई है और इस समय 10 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में बताया कि इन बसों के माध्यम से राज्य के विभिन्न इलाकों से प्रतिदिन लगभग 1,000 यात्री सफर कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि नालागढ़ से रामशहर और बद्दी से बघेरी होते हुए भी एम्स के लिए 2 नई बस सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित प्रदेश दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कुल्लू के उपायुक्त सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति का जिले में प्रस्तावित प्रवास 6 से 8 अक्टूबर तक है। इस दौरान उनका अटल टनल रोहतांग और मनाली के माता हिडिम्बा मंदिर का दौरा करने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि 5 से 8 अक्टूबर तक संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन, मानव रहित विमान, पैराग्लाइडिंग, गर्म हवा के गुब्बारे और अन्य हवाई उपकरणों को उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है। विकास कार्य ठप्प होने के विरोध में बमसन भाजपा मंडल द्वारा आज टौणी देवी में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें राजेंद्र राणा ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि टौणी देवी से सुजानपुर तक सारी सड़कें गड्ढों में बदल गई हैं और इन पर परिवहन निगम की बसें भी बंद हो गई हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह, टाउन हॉल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का काम भी ठप्प पड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब एक महीने पहले उठपुर में आईटीआई भवन के निर्माण को लेकर विरोध जताया गया था और भुगतान न होने के कारण ठेकेदार भी सामान लेकर जा चुका है। राजेंद्र राणा ने कहा कि अगर एक महीने के अंदर इलाके में सड़कों की हालत में सुधार नहीं हुआ और बंद पड़े काम फिर से शुरू नहीं हुए तो भाजपा बड़ा आंदोलन करेगी। धरने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजेंद्र राणा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
3: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
4: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
3: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यदि मुख्यमंत्री की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो वे इस बारे में पार्टी हाईकमान से चर्चा करेंगी। रजनी पाटिल ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा।
6: हम वेट कर रहे हैं कि उनका प्रस्ताव आ जाए। सीएम साहब प्रस्ताव देने चाहिए। सीएम साहब जब प्रस्ताव देंगे तो मैं हाईकमान को दे दूंगी। देखिए हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर तो काम करना ही पड़ेगा। आई एग्री। और सभी को एक साथ एक लाइन में एक विचार में लाना पड़ेगा और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जरूर करूंगी। ये जो अनुशासनहीनता है वो हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमारे सभी जिला अध्यक्षों ने ये बात बोली कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारा मानते नहीं, हमारी मीटिंग में आते नहीं। हम एक CLP की मीटिंग बुलाएंगे और उनको बताएंगे, ऐसा नहीं चलेगा।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कांगड़ा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग ने सभी निर्णय सर्वसम्मति और संविधान के अनुसार लिए हैं, जबकि विपक्षी दल अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
7: विपक्ष अपनी हार पर पर्दा डालना चाहता है, आत्मचिंतन नहीं करते। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें राज्यों में राज करती रही, तब तो इनको एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती थी, तब इनको इलेक्शन कमीशन में कोई खोट नजर नहीं आता था। लेकिन आज अगर मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण बार बार भाजपा की सरकारें बनती है तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढते आरोप लगाने का। एक आदत सी बन गई है झूठे आरोप लगाने की। इलेक्शन कमीशन ने जितने निर्णय लिए सर्वसम्मति से और मेजोरिटी से, वो लिए।
1: प्रदेश के अनेक भागों में मौसम ने आज एक बार फिर करवट ली है और अनेक क्षेत्रों में दोपहर बाद से वर्षा हो रही है। किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों सहित राज्य के कई उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्का हिमपात हुआ है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य के अनेक जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि कल 27 सितंबर को सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 137 करोड़ रुपए की 21 विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। देश व प्रदेश में कल रविवार को खुले रहेंगे सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 10,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्के हिमपात से ठंड बढ़ी, प्रदेश के 8 जिलों में कल भारी वर्षा का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
0: शोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वीडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो गया है श्रोतो आप सभी से अलविदा लेने का और आप सभी को टाटा बाय बाय कहने का। और जाते जाते बस यही कहूँगा कि मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और रेडियो गुंजन में आरजे सचिन कपूर को यूँ ही सुनते रहिए, सुनाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यू आर अ जीनियस।
5: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू, पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना से यूर अ जीनियस।
1: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की, तो होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है, अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
7: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
6: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
8: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
6: हाँ बोलो।
8: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
6: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
8: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
1: गजब बेइज्जती है।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपने रेडियो दोस्त रुचि का।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द की ने घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है?

0: टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
1: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू, पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। नाउ से यू आर अ जीनियस।
5: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ, कईयों को लगता है ना। ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की, होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

0: बापू, मैं जा रही हूँ। जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है। चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।
1: काली काली

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो 2 शशि।